0: आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। मेरे आवाज के प्यारे सुनने वालों, सेविका शांता जी के प्यार भरे राम राम प्रणाम आज के ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। तो बढ़ चलते सुनने के लिए हमारे राजेंद्र जी के ओर।
1: भावन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज का जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि सूपनखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि वह श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। बहुत ही रोचक विषय है। और इसके बाद विषय आता है कि हिंदू कौन है, कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सूपनखा कैसे कौन सा पुण्य किया था उसने कि दूसरी लाइफ में श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। तो इसी को सबको सुनने के लिए सब श्रोताओं को मेरा आज तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार रहेगा। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: कहने के तो बहुत कुछ है, पर क्या कहे राजेंद्र जी, क्यों ना पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए वही गीत चला देते हैं जो हरिओम शरण जी हम सब के लिए गा करके छोड़ गए हैं, जो मन से उदास बैठे हुए हैं उन सभी को।
1: जो मन से उदास बैठे हैं उनकी उदासी तो दूर होनी ही चाहिए।
2: जरूर जरूर।
1: और हरिओम शरण जी ने ऐसा एक भजन बनाया है कि सबकी उदासी तकरीबन दूर हो ही जाती है, क्यों ना वो गाना हम पहले सुने और उसके बाद आगे।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों आज हम सबका जो हमारे विषय है कि
1: हाँ आज का जो संदेश है हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि संदेश सूपनखा का संदेश है।
0: तो ये बताओ ये कौन सूपनखा है जो जिसका त्रेता में नाक काट दिया गया था?
1: हाँ रावण की बहन सूपनखा है, त्रेता में लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए थे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी महसूस कराई भगवान राम को, चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए भगवान राम से। उन्होंने बोला मैं तो शादीशुदा हूँ, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण के पास जाओ। तो फिर लक्ष्मण ने उनको मना किया कि मैं तो यति हूँ, मेरी तो हो नहीं सकती है। तो फिर भगवान राम के पास भेजा, तो फिर उन्होंने उनके पास भेजा, तो लक्ष्मण को गुस्सा आया और नाक कान ही काट दिया कि जा तब कहीं शादी करने लायक न रहे।
2: इसका और गहराई है, पर अब राजेंद्र इतना कह दिए तो इस पे धरो
0: नहीं, क्योंकि ये बात है, ये एक हम लोग सूरीनाम में होते थे ना, तो रामलीला होते थे, रामलीला राजेंद्र जी
1: जी,
0: तो रामलीला होते थे, तो जिस दिन सूपनखा का नाक कटता था ना, काटी जा, वो दिन तो खास दिन होते थे,
1: काफी
0: हाँ बड़ा भीड़ भाड़ होता था। आश्चर्य की बात है कि बड़ा शायद उस समय पे कथा हम समझे नहीं होंगे,
2: पर आपने पूछा तो मैं बता दूं। क्योंकि सीता जी है भक्ति और लक्ष्मण जी को कहते वैराग्य, और वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं पा सकते,
0: वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं हो सकता।
2: इसलिए जैसे सूपनखा तुरंत भगवान के ऊपर पास गए और भक्ति और वैराग्य को छोड़ दी, इसलिए उसका उसके साथ ये हाल हुआ।
0: तो दोस्तों ये समझ लेना कि कहीं आप ये दोनों को आप पार करके भगवान के पास पहुंचने का इच्छा कर रहे हो तो जानने रहना कि क्या होने वाला है। राजेंद्र जी आगे संदेश की ओर बढ़िए, क्योंकि बेचैनी से लोग इंतजार कर रहा है, पर ऐसा क्यों ना पहले हम क्यों ना एक उसी अंतर्गत में एक गीत को जो आपने इतना मेहनत से खोज करके रखे, पहले गीत को सुन लेते तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं।
1: जरूर पहले गीत सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे।

0: वो मेरी पत्नी है सीता। वो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण।
1: हाय हाय, निम्बू लगता है वो। मरी मरी मरी मरी मरी।

मन मंदिर में। मन और मंदिर की जब बात चलती है तो सारे काम सरल से ही हो जाते हैं। बात चल रही थी सुनने वालों सूपनखा की। सूपनखा रावण की बहन और श्री कृष्ण की पत्नी। जी हाँ, ये कथा बहुत ही रोचक है। त्रेता युग से द्वापर युग तक की ये कथा बेहद दिलचस्प है। जानिए सूपनखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी रावण की अति प्रिय भागिनी सूपनखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हों कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में सूपनखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी सत्री जिसने नककटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया, अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी।

0: तपस्या करते हैं और तभी जाकर के प्रभु परमात्मा से कि उनको प्राप्ति करता है। और ये तो बदमाशी किए थे, नाक कट गया था, कान कट गया था, फिर भी प्रभु का प्राप्ति कर लिए, तो इसकी वजह जानना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, मन बेचैन है और सुनने का इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को एक बार से फिर अभिनंदन करते हुए और ये जरूर कहना चाहूँगा कि संदेश जो है तो बड़ा ज़बरदस्त है और हम सब अभी उसके बारे में और भी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो शांता जी, इसमें क्या ये इस बात को आप थोड़ा से भी जानते थे कि ये वृतांत जो त्रेता में हुआ और द्वापर में कैसा मिलन, इसके बारे में?
1: ये त्रेता में जो हुआ, ये जो राम संग राम की कथा में, रामायण में, तो उनका कथा तो मैं बार बार सुनी, पर जो कि भगवान श्री कृष्ण के वधु बने, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
2: तो अब सुनिए आगे कैसे बनी।
1: वही तो हम बेचैन है, हमारे साथ श्रोताओं भी बेचैन है सुनने के लिए।
2: भगवान श्री राम का सानिध्य मिला, कैसे मिला? सूपनखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आदया शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दी। दरअसल इस सब का मर्म सूपनखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में सूपनखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। इंद्रलोक की जी।
1: तो इसको शायद कुछ शाप मिला होगा तब ये धरती पर आ गए।
2: हाँ, वही हम आगे बताने जा रहे हैं।
1: अच्छा।
2: उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिका स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय या नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गई। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई, वज्रा ऋषि के क्रोध का बनी भोजन। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि वज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि ये राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और सूपनखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म दिया। उसने मन में ठान लिया कि वो प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। अहंकार मई भी सूपनखा थी। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि सूपनखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो श्री प्रभु को प्राप्त कर सकती, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा।
0: ये अभी जैसे शांता जी ने कह रहे थे हम सब के साथ ना राजेंद्र जी,
2: जी
0: वैराग्य और भक्ति,
2: हाँ
0: इसी अंतर्गत में तो शांता जी तो काफी जानकारी है आपके।
2: हाँ, तो शांता जी तो सब चीज का जानकारी रखती है।
0: अपना
1: है?
0: पिटारा में लेकर
2: घूमती है तो वो तो सब रखती है।
1: इसलिए कहता है सत्संग करो भाइयों।
0: सत्संग में और ऐसे हम लोग के सत्संग वो ज्ञान सरोवर होता है जिसमें हम डुबकियां लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलते आते है। जैसे कि आपने कहा राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो दोस्तों, हम और आगे ये वृतांत को सुनने वाले, पर सुनने से पहले राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा गीत हम सब के लिए और चला दे।
2: जरूर जरूर।

0: कि गीत में तो राजेंद्र जी ने पूरा कथा रख दिया और कथा हम लोग यहाँ ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं ताकि हम सब के लिए एक सुंदर सा गीत खोज के रखते हैं। और कहावत ये है भी कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर और हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा और भाग्य लिखता है। तो हम सब आज के कार्यक्रम में जो राजेंद्र जी हम सब के लिए सुपनेखा का और वृतांत हम सब के लिए खोज करके लेकर आए हैं और हमारे लिए एक गीत का तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है इसका लक्ष्य बस यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके, यही हमारा लक्ष्य है। राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप हमारे लिए तैयार करके रखे हुए
1: हैं? गीत बहुत ही रोचक है, बोले राम से सुपनखा मुस्कुराई की कजरी है, अंजू उपाध्याय जी ने गाई है और अमृत अवधि परंपरा की है, बहुत ही अच्छी है, सुनते हैं इसको।

0: मुस्कुराई से बनुआ में आए के ना। बहुत ही अच्छी कजरी जो संजय जी की पसंद आई है। आगे बढ़ते हैं सूर्पनखा के बारे में। सूर्पनखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन बैराणी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। तब सूर्पनखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवता प्रात पर बैठी कर बैठी सोचा, प्रभु इस भक्ति के बस में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशैव दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
1: ये पुष्कर कहाँ है राजेंद्र जी? भारत में
0: पुष्कर
1: एक स्थान को भी कहते हैं पुष्कर तो?
0: हाँ, जयपुर के आगे एक अजमेर, अजमेर से थोड़ा सा आगे 35 किलोमीटर पुष्कर है।
1: पुष्कर वहाँ कहते हैं।
0: हाँ, पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है,
1: एक ही दुनिया पे एक ही मंदिर है ना ब्रह्मा जी का। हाँ, पुष्कर में
0: जी। तो करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पनखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। कुबजा, कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयन तारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सूर्पनखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी बनी।
1: सहचर्या मतलब?
0: सहचर्या मतलब पत्नी।
1: पत्नी
0: सहचर्या मतलब जो जैसे भगवान है तो उनके साथ साथ आगे का जो वृतांत है उसके साथ देना।
1: हाँ,
0: सहचर्या
1: उसको कहते हैं। सहचर्या
0: उसको सहचर्या कहते हैं।
1: ओ, ये बात हुआ
0: जी।
2: और 10,000 बरस तक ये
0: 10,000 बरस तक उनको तपस्या करना पड़ा तब ये मिला। और हम लोग साल भर एक दो साल एक कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान हमसे रूठे हुए हैं।
1: ऐसा होता है ना?
0: तो ऐसा कहते हैं, इसलिए भगवान कभी किसी से रूठते नहीं है। आप देख लो कि कई लोगों ने तो पूरा लाइफ और कई युग भी तपस्या करी तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं, और कलयुग में तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग नाम नाम ही भगवान का लेने से जल्दी सुमिर सुमिर करके उद्धार हो जाता है।
2: इतनी आसानी से?
0: इतनी आसानी से कलयुग में ये सुविधा है कि क्योंकि लाइफ उम्र कम है, 120 वर्ष तक की उम्र है, वो उसी में सब कुछ करना है, तो इसलिए उसमें शॉर्टकट दिया है।
1: वो तो जल्दी हो जाता है,
0: जल्दी हो जाता है।
1: तो ये तो बढ़िया हुआ, तो बढ़िया समय पे हम लोग का जन्म भी हुआ।
0: हाँ, एकदम अच्छे समय पे हुआ। और ये समय सदुपयोग करना चाहिए कि बोलना कि अच्छा नहीं है कलयुग, कलयुग बहुत अच्छा भी है।
1: जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि सूर्पनखा, ये वृतांत मैं आज पहला बार सुना हूँ जो कि द्वापर और त्रेता का वृतांत, और इसे सुन करके हमें अच्छा लग रहा कि भाई राजेंद्र जी इतना सुंदर संदेश हम सब के लिए रखे। पर राजेंद्र जी आगे का वृतांत क्या है?
0: आगे का वृतांत तो सूर्पनखा का एकदम समझ ही गए सब लोग, और आगे की वृतांत सुनाने की जरूरत भी नहीं है कि इतना ही वृतांत बहुत है।
1: इतना ही बहुत है।
0: हाँ, आगे का एक बहुत ही सुंदर गाना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इस क्या बनेगा फिर देखते हैं क्या बनना।
1: चलो सुन लेते हैं कि हमें क्या बनना।
0: जी जरूर।

जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान।

0: मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा,
1: इंसान के औलाद है इंसान बनेंगे, तो कैसा इंसान बनना आपको।

0: अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे।
1: इस बात पर ये भी कहना चाहती हूँ, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए,
0: तो सुना दो आगे।
1: अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाए।
0: शांता जी ने बहुत सुंदर संदेश दिए दोस्तों।

हिंदुस्तानी रेडियो जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है। और यह है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जिसमें हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपना जीवन का ज्योति जो जल रहे हैं, इसमें कोई भी प्रकार से और भी प्रकाश आ सके। तो हमारी खोजी सेना जो है हम सबके लिए विषय रख देते हैं। और जैसे कि अभी आपने राजेंद्र जी के मुखान से सुने कि त्रेता का वृतांत और द्वापर का वृतांत जो जा कर के हम शायद कभी नहीं सुने होंगे इसके बारे में, तो आज इस बात को हमें भी सुनने को अवसर मिला।

कीमत इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि अखबार जिसे हम क्रांत से जानते हैं ना, तो अखबार से पूछो कि सुबह की चाय के साथ आता है और शाम के चाय तक रद्दी हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मौका कम अफसोस ज्यादा देते हैं। तो हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: विशेष हिंदू शब्द की खोज हीनम दुष्यंति इति हिंदू से हुई थी, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन संस्कृत शब्द से है। यदि संस्कृत के इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो पाएंगे हीन प्लस दू बराबर हीन भावना से दूर, यानी जो हीन भावना से, हीन भावना समझिला संजय जी?
1: ना ना समझिल, बोले तो
0: खराब भावना,
1: खराब भाव,
0: हीन मतलब पीछे,
1: हीन
0: भाव, खराब भाव, भावना, भावना जो रहे
1: हिंसक के हीन है वो।
0: हाँ, हिंसक के हीन रहे,
2: जो खराब काम कर,
0: हाँ
1: वो ना ठीक है,
0: ना ठीक है,
2: ना ठीक काम करे। हाँ।
0: अर्थात जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर रहे, मुक्त रहे, वो हिंदू है।
2: खराब काम से जो दूर रहे, हिंसा से दूर रहे, चोरी चपाटी से दूर रहे।
0: हमें बार बार सदा झूठ ही बतलाया जाता है कि हिंदू शब्द मुगलों ने हमें दिया, जो सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू शब्द की वेद से उत्पत्ति है। जानिए कहाँ से आया हिंदू शब्द और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु से बना और यह फारसी शब्द है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल झूठ फैलाया जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला।
1: तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: अगर आप कहते कि लोग ऐसे कहें कि क्योंकि ये तो हमारे इतिहास में शायद लिखे होंगे कोई कुछ लोग कि सिंधु पर, सिंधु है क्या है?
0: सिंधु घाटी की सभ्यता है। एक आपने इतिहास में देखा होगा कि सिंधु एक घाटी है, उसकी पूरी एक सभ्यता है। तो इतिहास में वो बहुत सारा उसका देखने को मिलता है।
1: हाँ।
0: वो एक प्रोग्राम बन सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता पे। आप चाहेंगे तो अगली बार वो प्रोग्राम हम धरेंगे यहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता।
1: काफी जानकारी उस पे,
0: बहुत बहुत ज्यादा
1: तो अच्छा, उसके बारे में एक बार जरूर बात करेंगे। हाँ। पर आज हो रहा है हिंदू का बात,
0: जी
1: सिंधु का नहीं, हिंदू,
0: हिंदू का।
1: शांता जी, आपको इसके बारे में कुछ कहना है?
2: हाँ, तो क्योंकि मुझे आज पता चला भी बहुत सारे चीजें, तो मुझे बहुत गर्व है।
1: सही बात, सब गर्व के बात। ये कार्यक्रम ही ज्योति का प्रकाश ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग के विशेषज्ञ जो हमारे विषय रखते हैं
2: अलग अलग से विषय,
1: अलग
2: हर
1: विषय से
2: अलग से हम लाते हैं, इस पे हमारी भी उन्नति होती है।
1: जरूर जरूर, हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा और प्रकाश आ जाता है ना।
2: एकदम।
1: तो राजेंद्र जी सुना दो आगे।
0: हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला है। ऋग्वेद के ब्रह्मस्पति आगम्य, ऋग्वेद से बृहस्पति आगम्य में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है।
1: उल्लेख के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: उल्लेख मतलब देखना, जैसे ये इस किताब में हमने ढूंढा और वो लिखा हुआ मिला, उल्लेख, लेख को
1: लिख, जो लिखा हुआ है,
0: जो लिखा हुआ
1: जिसमें
0: है,
1: जिसमें मिल सकते हैं,
0: उसमें मिल सके, किसमें मिलता है? ऋग्वेद के बृहस्पति आगम्य में मिलता है उल्लेख।

0: क्षति। इस प्रकार मिलता है लिखा हुआ ऋग्वेद में, अर्थात हिंदू से हिमालय से ही इंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं।
1: अच्छा,
0: केवल वेद ही नहीं बल्कि शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, हीनम चा दुस्ततेवा हिंदू रिच्चतुच्चते प्रभे, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक कल्पद्रुम में दोहराया गया है, हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। क्यों ना हम एक आप कुछ पूछना चाहेंगे या गाने की तरफ बढ़े?
2: नहीं, इच्छा है कुछ इसी अंतर्गत में जो गीत होगा, कुछ पता नहीं शांता जी पिटारा से क्या छोड़ने वाले हैं।
0: हाँ, पिटारा में जो शांता जी ने छोड़ ही रखा है हम उसको सुनते हैं।

0: घूमे घूमे घूमे घूंगर, पद्मावती फिल्म का बहुत ही अच्छा जो गाना अभी आपने सुना है।
1: ये फिल्म आपने देखे कि
0: नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा ये फिल्म, शांता जी ने देखा। शांता जी इसका कुछ वृतांत बता सकती है, लेकिन इस फिल्म पे बहुत हंगामा हुआ।
1: हाँ, मैंने भी इस फिल्म के बारे में काफी हंगामा हुआ था भारत में।
0: जितना हंगामा हुआ उतना ये फिल्म सुपरहिट हो गई।
1: अच्छा, शांता जी आपने देखा है फिल्म?
2: फिल्म हमने देखा यहाँ शहर में, बहुत जैसा राजेंद्र जी कहा एक सुपरहिट फिल्म है। और अगर इस फिल्म को आपको देखोगे तो आपको जैसे सांस बंद कर कर देखना पड़ेगा।
1: अच्छा, इतना गंभीरता फिल्म है।
2: हाँ।
1: ऐसा क्यों नहीं करते राजेंद्र जी, क्योंकि आप जो वृतांत सुना रहे हम सबके हिंदुत्व के बारे में, उसमें क्या और संदेश है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी ने फिर एक अच्छा संदेश भेजा है।
0: क्यों ना वो संदेश पहले
1: सुना दूं मैं?
0: जरूर,
1: क्योंकि संदेश तो आते रहते हैं। और यहाँ संदेश है कि खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है, खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियाँ महक जाती है। ऐसा ये वृतांत क्यों है? क्योंकि इस पे जब ध्यान दिया जाए कि हम सब कहीं सत्संग और पे जाते हैं ना
2: जी।
1: कहाँ जाते हैं आप सत्संग पे शांता जी?
2: नाम लेना अलाउड तो मेरे
1: नहीं, अलाउड नहीं, नहीं पर जाते मंदिर और ब्यूर्थ है और उसमें नाम तो नहीं लिया मैंने और बस बोल दिया।
2: हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। और हमारे विज्ञानों लोग भी ये मंच पे बैठ के और कथा कहते हैं, तो उसमें से भी आप बहुत सारे चीजें ग्रहण कर सकते हैं।
1: जरूर, तो सत्संग में जाना, पर सत्संग में जाना जैसे कि ये वृतांत सुनाया गया कि खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है। और चंदन क्या है? चंदन एक ऐसा वस्तु है जिसे आपको और सिर से माथे से लगाते हैं लोग। कहीं जाओ और चंदन लग के और आप बाहर निकलो तो लोग जान जाएंगे कि ये कहीं सत्संग से आ रहे हैं।
2: और वो ठंडक पहुंचाता है।
1: ठंडक भी पहुंचाते, पर इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि उंगलियां महक जाते हैं। और आजकल क्या हुआ राजेंद्र जी, हॉलैंड में ऐसा हो गया है।
0: कैसा?
1: कि हम लोग सलाई के टिक्की में रुई लपेटता है और रुई से और लगा करके चंदन सबके की तो और वाचे से लगाने लगा। तो ये बात है कि कौन उंगली से किसके चंदन लगाना है, इसमें भी संदेश होता है। उसी कारण ये वृतांत को लोग लिखे हैं कि वैसे चंदन को चाहिए उंगली से लगाने को। लोग वत स्टाफ से और यानी सलाई के टिकिया में लपेट करके और रुई उसी से चंदन लगाते रहते हैं, पर असलियत में चंदन का महत्व लगाने में कुछ और है। इस पे हम सबको जरूर थोड़ा से ध्यान देना है।
2: आपने कहा उंगली से, तो कौन से उंगली?
1: एक अनामिका से और लगाया जाता है और एक अंगूठा से लगाया जाता है, ये तो मैं बस जानता हूँ कुछ छोटा से। बाद में हम ने मास्टर जी जो हमारे पैनल के पीछे है उससे पूछेंगे। अगर जब हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे और बातों बातों में बस यही रुक जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम में जो आज हमारे विशेषज्ञों ने
2: पर अभी ने आपने छेड़ा ना कि चंदन लगाना ये तर्जनी।
1: हाँ।
2: और अंगूठा था, अंगूठा से पुरुष को लगाता लगाया जाता
0: है? तर्जनी ये रहे।
2: अच्छा, तर्जनी
0: इससे नहीं।
1: हाँ, तो राजेंद्र जी ने दिखा दिया कि तर्जनी। हाँ,
0: रिंग फिंगर
1: को कहते हैं अनामिका।
2: अनामिका।
0: हाँ,
1: और अंगूठा।
2: और अंगूठा।
1: हाँ, और सभी सुनने वाले ने देख नहीं पाए यहाँ से,
2: इसलिए
1: तर्जनी कहते हैं वेज फिंगर। तो राजेंद्र जी, शांता जी को तो ये है कि बस अब बता ही दीजिए, पर अभी अगोल लेते हैं शांता जी।
2: अच्छा,
1: बाद में देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग कुछ और।
0: हाँ, आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: परिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है।

दीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। माधव दिग्विजय भी इन्हीं शब्दों को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, वो हम सुनाएंगे इस गाने के बाद। तो बढ़ते हैं, क्यों ना एक गाना सुनेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। संजय जी, आपने कौन सी जोत जलाई आज?
1: आज मैंने ये जोत जलाई कि ज्योति का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश का जोत धीरे धीरे जल रहा है। और अभी तो शांता जी ने ऐसा प्रश्न रख दिया है कि कार्यक्रम में ये विषय था ही नहीं, पर इसके बारे में तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। और अब देखा जाए कि कैसे,
2: क्योंकि लाभदायक है और जानकारी इसमें है।
1: लाभदायक और जानकारी भी है राजेंद्र जी, तो ऐसा क्यों ना थोड़ा से इसके बारे में हम सबको सुना सकते हो आप या हम सब?
0: हाँ जरूर, जो रिंग फिंगर रहे
1: रिंग फिंगर,
0: उसको तो लेडीज को तिलक लगाया जाता है ज्यादा करके।
1: हाँ,
0: ये छोटा तिलक, अगर पुरुष को भी लगाया तो छोटा रूप में।
1: हाँ जी,
0: जो अंगूठा रहे तो उसको राजपूत जैसे तिलक लगाते हैं नीचे से ऊपर तक,
1: नीचे से ऊपर।
0: हाँ, बड़ा वाला।
1: हाँ,
0: और जो तीन उंगली रहे बराबर,
1: हाँ,
0: उससे चंदन लगाते हैं, त्रिकुट।
1: त्रिकुट
0: जो लोग, कुछ लोग पंडित लोग त्रिकुट लगाते हैं या शंकराचार्य लोग जो लगाते हैं।
1: हाँ,
0: वो इसी से लगाते हैं। तो इस प्रकार तिलक के बारे में जो बात आप कर रहे थे ये है, ऐसा है,
1: ऐसा है। पर
0: जी
1: राजेंद्र जी, एक छोटा सा प्रश्न
0: जरूर।
1: आपने कहा नीचे से ऊपर, ऐसा हाँ, क्यों?
0: क्योंकि ये एक, ये इस जगह पे भी जो चक्र है, आज्ञा चक्र है,
1: आज्ञा चक्र,
0: हाँ, उस चक्र को हम लोग एक वो देते हैं कि यहाँ पे जो तिलक है उसका प्रभाव उसमें रहता है। और वो आगे चक्र जो है चंदन लगाने से ठंडा रहता है और एकदम ज्योति, उससे ज्योति का जो आप हम लोगों को प्रोग्राम है
1: ज्योति का प्रकाश,
0: तो वहीं से ज्योति का प्रकाश भी होता है।
1: सही बात, सही बात। अच्छा, सुंदर संदेश आपने दे ही चुका है हम सबको। शांता जी, इसमें कोई शक?
2: बिल्कुल नहीं, पर हम ये खुशकिस्मत समझते हैं कि अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना, है ना? अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। इंसान के रूप में हमको जन्म मिला है, तो ये किस्मत नहीं है तो और क्या है भला?
1: इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है तो ये किस्मत है कि
0: नहीं तो क्या भला?
2: ताकि हम चंदन लगा सकते, तिलक लगा सकते हैं।
1: ये तो बहुत सौभाग्य की बात होता, क्योंकि 84 लाख योनियों में से इंसान का योनि, यहाँ तक कि मैंने सुना है देवताओं भी ऐसा शरीर के तरसते। और हम सब यहाँ पर खास करके ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम बनाने के लिए सेवा के अंतर्गत यहाँ पहुँच गए हैं। और हम लोग के भी ऐसे इसमें मगन होना, इसमें संदेश छोटे छोटे रूप में हम सब के लिए खोज खोज के रखा जाता है। और हम सभी ये कार्यक्रम द्वारा आपके घर में, आप चाहे जहाँ भी हो, ये कार्यक्रम को 188 देशों तक सुना जा सकता है। कहीं भी हो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो आपको और ये संदेश छोटे रूप में हम सब यहाँ से अपने जीवन के ज्योति के प्रकाश डालने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
0: हाँ, आगे का जो वृतांत हमारा चल रहा था, आगे का वृतांत माधव दिग्विजय जी के अनुसार

0: छंदसा दूषक अर्थात वो जो ओमकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे वो हिंदू है। केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में विव हिंदू नामक के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 46,000 गौ माता दान में दी थी और ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तु दुरितामह अर्थात हिंदू सब लोग सदा ही शुरू से रहे हैं और रहेंगे, तो दुरितामह। आप इसके बाद हम चलते हैं एक सुंदर सा गीत की ओर और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: राजेंद्र जी, सुंदर से गीत की ओर आगे बढ़ेंगे, पर आज बस यही प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई रॉय जी जो एंडहोफ शहर से यहाँ उपस्थित है स्टूडियो में है और हम सब सूरीनामी है, तो क्या सूरीनाम हमारा प्यारा देश आज आप चलाने वाला है कि कार्यक्रम में हम लोग का बिल्कुल समय नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, वो जरूर चलेगा, क्योंकि आज यहाँ पे तीन लोग सूरीनाम कहते, सूरीनाम हमारा प्यारा देश क्यों नहीं चलाया जाएगा
1: एकदम से
0: एकदम से। लेकिन उससे पहले कोई दूसरा गाना रहेगा, इसके बाद हो रहा
1: जरूर जरूर
0: जरूर।

0: गोरा मन दर्शन करवाए। बहुत ही अच्छा। मन दर्पण जो है, मन का दर्पण का मतलब होता है, दर्पण मतलब होता है शीशा, आईना। और जब शीशा के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी ही शकल उसमें दिखती है। तो वैसे तो हम देख नहीं सकते अपनी शकल, लेकिन एक शीशा, शीशा मतलब दर्पण, जो सामने है वो दिखेगा। वही एक चीज है जो दिखा सकता है, दर्शा सकता है। तो अपने आप को अगर देखना हो तो शीशा में, वैसे मन दर्पण कहलाए। वैसे अपने आप आँख बन करके अपने शरीर के अंदर जाके अपनी मन की आँखों को खोल के अपने अंदर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो मन का दर्पण है वो बहुत ही अच्छा है, वही दर्पण होना चाहिए। संजय जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे?
1: जरूर कहना चाह रहा था राजेंद्र जी, क्योंकि ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति ने हमसे बोले
0: जी,
1: व्यक्ति ने बोले कि मेरे दादा ने, हम लोग कहते आ जाना,
0: हाँ,
1: दादा ने अपने कमरे से एक बड़का दर्पण लगाए थे।
0: हाँ।
1: उन्होंने कहा कि वो रोज बाहर निकल के अपने सभी कमरों में दर्पण लगाए थे, छोटे छोटे
0: जी,
1: पर अपने कमरे में एक इतना बड़ा दर्पण लगाए थे जिसमें वो पूरा शरीर दिखता था।
0: हाँ।
1: तो वो कह रहे थे कि मेरा दादा में ये था कि रोज वो बाहर जा करके जब लौट करके आए तो वो उसी दर्पण में देख करके अपने आप से ये प्रश्न करते थे
0: जी,
1: कि क्या हमने ठीक किया या क्या हमने गलत किया
0: जी।
1: तो उससे वो, उसे वो सीख मिलता था कि कुछ गलती हो जाता, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो ही जाता है। उसी से वो अपना गलतियों को संभालते थे, कि क्योंकि वो रोज अपने आप को देख करके अपने आप में वो प्रश्न रखते थे, और प्रश्न रख करके और अपने आप में सुधार कोशिश करते थे रखने को। तो इसी प्रकार से वो अपना और बनाए थे। आगे के कार्यक्रम में जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो शांता जी भी कुछ तैयारी करे हैं, और शांता जी आज मैं ऐसा आपके तैयारी के ओर नहीं जाऊंगा, पर एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूं आपसे।
2: मैं तैयार होकर आई हूं।
1: पर शांता जी, कभी आपने किसी को सिर से चुरकी देखे?
2: हम बहुत ऐसे लोगों को देखती हूँ।
1: आप हमें देख रहे हो पर हमारे सिर से आप दिखाई नहीं देंगे।
2: चुरकी नहीं, राजेंद्र के सिर पर है चुरकी। एक ये कहते हैं पंडित जन को एक चुरकी ऐसे लगाते हैं ना।
1: हाँ जी। हाँ।
0: ये रहे रमन।
1: हाँ।
2: वही तो हम देख रहे हैं।
0: एंटीना।
1: एंटीना।
2: एंटीना। हाँ।
1: हाँ। तो क्या उसका मतलब आपको पता है?
2: हाँ, मुझे पता है। उसके बारे में खोजबीन की तो मुझे कुछ हासिल हुआ। तो आपने पूछे सही वक्त पर सही प्रश्न, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हो?
1: उसी लिए तो ये प्रश्न को रख

0: बढ़ती है कि जो एंटेना है इसका मतलब क्या है। एक सर
1: आप भी चुटकी रखा है
0: अभी, राजेंद्र जी ने कहा ना उसका एंटेना है।
1: राजेंद्र जी ऐसा क्यों ऐसे करते क्यों, एक गीत के ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में फिर थोड़ा से सूरीनाम हमारा प्यारा देश।
2: गीत के भी बहुत अच्छे बोल है कि यह है गीता का ज्ञान, वो जरूर हम बढ़ाएंगे।

0: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
1: तथास्तु।
2: इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा, एक दुर्योधन भाई। कृष्ण कंस का

0: दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप सजा के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,
0: वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या पहचाने। ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगाए।

ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान अभी संजय जी आपने बड़ा ही अच्छा ढंग से सुना है, जो कि इसकी फिल्म जो ऋषिकेश में बनी थी और फिल्म में बहुत लोगों ने सराहा है उसको।

तीन लोग आज यहाँ सूरीनाम के बैठे हैं तो उनका प्यारा देश इतना अच्छा है कि सब लोग एकदम झूम उठते हैं। अब बढ़ते हम आगे, लागी छूटे ना सनम, अब तो क्योंकि अब हमारा समय जो स्टूडियो से विराम की ओर बढ़ता है, तो चलते हम, लागी छूटे ना सनम, अब तो सनम।

लागी छूटे ना अब तो सनम चाही। ये जो जब ये गीत आता है, जब ये गाना बजता है, तो सब लोग और हम लोग भी यही देखते हैं कि अब हमारा हमारे श्रोता गण जो कि हमको इतने प्रेम से सुनते हैं, वो उनका भी मन कहीं ना कहीं इस गाने से ये लगता है कि हमारा पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण की तरफ आगे हो रहा है, यानी कि और इस गाने से बहुत ही सबको और हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि लागी छूटे ना अब तो छूटना ही है। दोस्तों सुनने वालों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारा इतना प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं, फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।

जिंदगी दो पल की है, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है यहाँ, इसलिए कल को छोड़ो आज में जी लो। प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए बहुत से धन्यवाद। जो हमसे अनजाने में गलतियां हो गई हो तो माफी हम आपसे मांगते हैं, स्वीकार कीजिए। सभी का शांता की प्यार भरे राम राम।

हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब आज फिर और इकट्ठा होकर के कार्यक्रम को ज्योति का प्रकाश जो आपके लिए प्रस्तुत किया गया। आशा यही है कि अगले सप्ताह आप जरूर सुनते रहना। हमारे साथ सहयोग दिए शांता खिमाई जी, राजेंद्र सिंह जी जो पनील के पीछे बैठे हुए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज़ होना चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर प्रोग्राम लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्वपन विज्ञान।

आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी राशि, लगन तथा स्वप्न के बारे में। तो हम पहले बढ़ते हैं लगन के बारे में। मनुष्य प्रायः पहले चार सुखों के बारे में ही स्वप्न देखता है, क्योंकि वह इन्हें कर्मानुसार पसंद करता है। ये चार सुख इस प्रकार है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सब देखते हैं कि किस लगन वालों के लिए किस किस ग्रहों के योग से यह सभी स्वप्न साकार होते हैं। पहला है मेष लगन। इस लगन के जातकों के चारों सपने इस प्रकार साकार होते हैं। यदि लग्नेश मंगल बलवान शुभ ग्रहों के द्वारा देखा गया हो या शुभ ग्रह लगन में हो तो स्वास्थ्य दीर्घ आयु का सपना साकार होता है। लक्ष्मी साकार स्वप्न के लिए चंद्र केंद्र त्रिकोण स्थिति के 2 व 12 के स्थान पर गुरु शुक्र हो तो जातक पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो जाती है। केम दुरुपयोग हो या लगन 2/8 पाप ग्रह हो तो लक्ष्मी का स्वप्न अधूरा रह जाता है।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दूसरा है वृष लगन। इस लगन वालों के चारों स्वप्न इस प्रकार साकार होते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ आयु का स्वप्न तब साकार होता है जब लग्नेश शुक्र बलवान हो, शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह लगन को देखते हो। निर्बल होने से शरीर के स्वप्न को निर्बल कर देते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब बुध बलवान

दुरुपयोग होने से स्वप्न निराधार हो जाएगा। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन की ओर। इस लगन वालों के स्वप्न इस प्रकार हैं: बुध गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त होने या निर्मल होने पर यह स्वप्न शून्य मात्र रह जाते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब धनेश चंद्र लाभेश मंगल बलवान को शुभ ग्रह देखते हैं। चंद्र बलवान के दोनों और शुभ ग्रह हो, इसके विपरीत होने पर निराधार हो जाएगा। सुखी ग्रह जीवन का सपना तभी साकार हो पाएगा जबकि सप्तमेश गुरु बलवान हो। गुरु केंद्राधिपति दोष होने से स्वप्न बिगड़ जाता है। संतान सुख का सपना तभी साकार होगा जब पंचमेश शुक्र बलवान हो। इसके प्रतिकूल होने पर जातक संतान की ओर से दुखी रहेगा।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन स्वास्थ्य दीर्घायु का सपना तब साकार होगा जब लग्नेश चंद्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या वहां स्थित हो। निर्बल होने पर या केंद्र त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना होने पर स्वप्न निराधार हो जाएगा। लक्ष्मी स्वप्न कर्क लगन वालों का जब साकार होता है तब चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह धन लाभ भाव में स्थित हो या इन स्थानों को देख रहे हो। निर्बल रहने पर स्वप्न अधूरा रहकर जीवन को अशांत कर देता है। स्त्री स्वप्न साकार करने के लिए शांति बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह बलवान सातवें भाव में स्थित हो या उस स्थान को देख रहे हो, यदि सातवां भाव निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो, शांति निर्बल हो, तो ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। संतान स्वपन सुखी होने के लिए पांचवां स्थान या पंचमेश बलवान हो, मंगल बलवान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इन योगों के निर्बल होने पर स्वपन भी निर्बल हो।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि में सिंह लगन कैसे स्वप्न साकार करते हैं। सिंह लगन, इनको स्वास्थ्य शरीर का सपना साकार होने के लिए लग्नेश सूर्य बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह लगन में हो या इनको देख रहे हो, इसके विपरीत शरीर में कष्ट होता है। अर्थ संबंध में बुध को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह धन भाव में स्थित हो या उन्हें देख रहे हो तो लक्ष्मी स्वप्न साकार हो जाता है, अन्यथा दरिद्र रहते हैं। इस लगन वालों को का सुलक्षणा स्त्री का स्वप्न तभी साकार होता है जब शनि बलवान हो, इसके विपरीत यह सपना अधूरा रह जाता है। योग्य संतान का चौथा स्वप्न फलीभूत होने के लिए पंचमेश बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान पर बैठे हो, अन्यथा यह स्वप्न व्यर्थ हो जाता है।

सुनने वालों अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, यानी कन्या लगन। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए बलवान गुरु केंद्राधिपति दोष रहित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या सातवें बलवान ग्रह हो या इस प्रकार इनकी दृष्टि हो, मनुष्य संतान सुख तभी प्राप्त करेगा जब बलवान शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पांचवें बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि हो। इसके विपरीत जातक संतान की ओर से दुखी ही रहता है।

सुनने वालों, स्वप्न तो हम सब देखते हैं और सपनों का कुछ अर्थ भी होता है और उनके कुछ फल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ स्वप्न और उनके फल, यानी जो लोग हम सपना देखते हैं उनके फल क्या निकलता है। जैसे अनाज भरना, तो उसका फल निकलता है धन लाभ। अगर सपने में हम अनाज देखते हैं तो उससे हमें धन का लाभ होता है। मरण होना, अगर हम मरने का सपना देखते हैं तो हमारी दीर्घायु यानी हमारी आयु लंबी होती है। आंधी देखना, यानी सपने में अगर आंधी तूफान देखते हैं तो उसका मतलब है संकट चिंता

हम जैसे सपने देखते हैं और सपनों का मतलब भी होता है, और अभी मैंने आप सबको बताया कि उसके फल भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इमारत देखना। सपने में हम लोग इमारत का मतलब कि कोई बिल्डिंग देखे या कोई बड़ा मकान देखे तो उसका फल हमें मिलता है लाभ। तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे का लाभ हो, और भी किसी वस्तु का लाभ मिल सकता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम सपने में ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसका मान हानि या हमें हानि होती है। कुत्ते का काटना, अगर सपने में हमें कुत्ता काटता है तो उसका फल है शत्रु भय, कि हमें अपने शत्रु से भय है या किसी भी चीज़ से हम

सुनने वालों, अगर हम सपने नाव देखते हैं यानी बोट को देखते हैं तो परेशानी फल मिलता है कि उससे हमें परेशानी कोई भी मिल सकती है। चित्र देखना, कि सपने में हम किसी भी तरह का चित्र देखें तो उससे हमें राज्य लाभ कि हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जहान देखना, उससे हमें होता है स्त्री क्लेश

सुनने वालों, अगर हम सपने में जवाहरात, हीरे जवाहरात देखते हैं तो कार्य सफल, तो उसका फल मिलता है कि हमारे जो भी कार्य हैं सब सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

सपने में हम सुनने वालों, अगर तख्त पर बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है इज्जत पाना। तख्त मीन्स किसी ऊंचाई पर बैठे हैं या किसी सिंहासन पर बैठे हैं या ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें इज्जत मिलती है। तालाब स्नान, अगर हम तालाब में स्नान करते हैं तो उससे भी इज्जत मिलती है। दरिया में नहाना, उससे हमें रोग ना

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। अब मैं आपके लिए थोड़ी और ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें। हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा अपना काम सुधार सकते हैं। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, उसे अच्छी तरह जियो। खाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह जीना भी चाहिए। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ छूनी नहीं चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उसे ध्यान से गौर से देखना जरूर चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, उन बातों को जीवन में भी उतारना चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं और कभी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन उन बातों को थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, हो सकता है कि बेहतर काम करने के लिए कोई आपकी तारीफ ना करे, पर यह जान ले कि बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कार्य के प्रति लापरवाही या देर से अथवा ना करने की प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को धोखा देना होता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, किसी भी दिन का अफसोस मत कीजिए, अच्छे दिन हमेशा खुशी देंगे और बुरे दिन अनुभव देंगे, इसलिए हर क्षण का आनंद उठाने की ठान लीजिए। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो पाए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि यही ईश्वर की मर्जी है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो, फिर आपसे कोई नाराज़ हो तो कहना। सच बोलती हूँ तो टूटते हैं रिश्ते, चुप रहती हूँ तो खुद टूट जाती हूँ। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। कालवास, प्रत्येक वार को काल का निवास अलग अलग दिशाओं में होता है। रविवार उत्तर की ओर, सोमवार वायव्य

विषैली किरणों का अंश आता जाता है और वह अपना क्रम बदलती रहती हैं। यह क्रम ठीक उसी क्रम में बदलता रहता है जिस क्रम को भारतीय ऋषि महर्षियों ने काल दिशा निर्धारित की है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा में शारीरिक रूप से विषैली किरणों का सामना करना पड़ता है और कार्य सफलता में भी बाधाएं आती हैं। उस पर ऐसी किरणों का प्रभाव होने से जब वह सामने वाले व्यक्ति के पास जाती हैं तो उसके शरीर से एक ऐसी गंध प्रवाहित होती है जो सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। काल निवास की गणना नंबर वार घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर करनी होती है।

सुनने वालों बाबा आगे चलते हैं। छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल। छिपकली तो आप सब लोग जानते हैं और गिरगिट होती है कैमलियन, और अगर हम सपने में इन दोनों को देखें और उसका क्या फल प्राप्त होता है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ सुनने वालों। रोते हुए अगर हमें छिपकली या गिरगिट रोते हुए मिले तो उसका हमें फल मिलता है मनोरथ सिद्धि। हंसते हुए अगर हमें सपने में ये दोनों हंसते हुए मिले तो उनका फल मिलता है भयानक घटना। सोते हुए अगर ये दोनों हमें सोते हुए मिले तो उसका फल मिलता है देर से फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल हमें जल्दी नहीं प्राप्त होता। जागृत अवस्था अगर हम इन दोनों को सपने में जागते हुए देखें तो तत्काल फल प्राप्त होता है, तो हमें तुरंत ही उसका फल प्राप्त हो जाता है सुनने वालों। भोजन करते समय कुछ भी फल ना हो, अगर ये दोनों हमें भोजन करते हुए दिखाई दिए सपने में तो उससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार, मैं हूँ।

प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो चले हम शुभारंभ करते हैं रामायण का पंचम कांड यानी सुंदर कांड।

मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तों, अंगद जामवंत आदि को धीर बंधाकर और प्रतीक्षा करने के लिए कहकर केसरी नंदन श्री हनुमान जी सबको मस्तक झुकाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान करके हर्षित होकर चले चले सागर के तट पर एक सुंदर एवं विशाल पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल ही खेल में उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और बारंबार रघुवीर जी का सुमिरन करते हुए बलवानों के बलवान, ज्ञानियों के ज्ञानी, भक्त शिरोमणि मात अंजनी के लाडले अत्यंत वेग से उछले, बोलिए श्री राम भक्त बजरंग।

जब सर्पों की माता सुरसा को महावीर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु जा रहा हूँ। जब मैं प्रभु का कार्य पूर्ण करके वापस आऊं, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। परंतु सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और अपना मुंह योजन भर फैला लिया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। तब जैसे जैसे सुरसा मुंह फैलाती गई, हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते गए। अंत में जब सुरसा का मुंह 100 योजन फैल गया, तब श्री हनुमान अपना शरीर अति सूक्ष्म करके सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल गए।

लंकिनी हनुमान जी के एक ही प्रहार से लहू लोहान होकर भूमि पर गिर पड़ी। पुनः होश आने पर लंकिनी बोली, हे कपिराज, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब राक्षसों का अंत निकट जाने। हे कपीश्वर, आज मैं धन्य हो गई जो श्री राम जी के दूत के रूप में आपको इन नेत्रों से देख रही हूं। हे वानर राज, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश करके उनका कार्य पूर्ण

विभीषण जी ने हाथ जोड़कर विप्र रूपधारी श्री हनुमान जी से पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आप या तो प्रभु श्री राम जी के भक्तों में से कोई हैं, अथवा स्वयं श्री राम जी हैं। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, कृपया अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। भक्तों, तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा समझाकर अपना नाम बताया। तब विभीषण जी भाव विभल हो उठे और बोले कि हे पवन पुत्र, मैं यहाँ लंका में इस प्रकार रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच जिभिया रहती है। हे हनुमान जी, मेरा तमसी शरीर होने से भजन तो होता नहीं, फिर प्रभु श्री राम जी क्या मुझे अनाथ जानकर

सज्जनों, फिर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठ गए। उसी समय मंदोदरी सहित लंकाधिपति रावण अशोक वाटिका में आता है और काल के वशीभूत होकर सीता से अपनी पटरानी बनने के लिए कहता है। अनेक प्रकार के प्रलोभन देता जब माता जानकी उसे प्रभु श्री राम जी के बल की महिमा बताती है तो वह क्रोधित होकर अपनी खड़ग उठाकर जानकी जी को मारने के लिए दौड़ता है। तब मंदोदरी उसे समझाती है तो रावण सीता जी को एक महीने का समय देकर वहां से चला जाता है। तब रावण के जाने के बाद सीता जी त्रिजटा नाम की राक्षसी से कहती

प्रभु भक्त आत्माओं, अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु मन में हर्ष और विषाद के तूफान चलने लगे। प्रभु श्री राम जी की निशानी मिलने से सीता जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु फिर सोचा कि ये अंगूठी यहाँ किस तरह पहुंची। सीता जी विचार करने लगी कि रामचंद्र जी तो अजय हैं और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती, फिर यह मुद्रिका यहां कैसे आई। फिर सीता जी बोली, हे भाई, जो इस मुद्रिका को यहां लेकर आया है वो सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो भक्तों, उसी समय श्री हनुमान जी वृक्ष से उतर कर सीता जी के सन्मुख प्रकट हुए।

मित्रों, वानर स्वभाव से तो चंचल होता ही है। चहु वो सुगंधित फल देखकर हनुमान जी को भूख लगने लगी तो हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर फल खाने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलने कूदने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। जब वाटिका के रखवाले उन्हें रोकने लगे तो वीर बजरंगी ने उन्हें खूब मारा, खूब मारा। कुछ राक्षस जान बचाकर भागे और रावण की सभा में जाकर वहां का सब हाल बतलाया। तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को एक ही मुट्ठी के प्रहार से मार डाला। तब राक्षस राज रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा।

तब श्री हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जो सूर नर एवं धर्म की रक्षा की हेतु नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली जैसों का वध कर डाला, और जिनकी पत्नी को तुम छल से हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का छोटा सा दूत हूं। हे रावण, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए, परंतु देह तो सबको प्रिय है। जब तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा। हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूं कि माता जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप कर प्रभु से वैर त्याग दो और उन्हीं का सुमिरन करो।

फिर भक्तों, रावण ने विभीषण की सलाह मानकर अपने राक्षसों से कहा कि हे वीरों, बंदर की ममता अपनी पूंछ पर होती है, इसीलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। इतना सुनकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे और अपना शरीर अत्यंत विशाल कर लिया। जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी अति लघु रूप बनाकर एक भवन से दूसरे भवन पर कूद कूद कर समस्त लंका में आग लगाने लगे और इस प्रकार विभीषण के घर को छोड़कर बाकी सारी लंका को जला डाला और फिर समुद्र में कूद कर पूंछ की आग बुझाई और अशोक वाटिका में माता सीता के सन्मुख आकर हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं।

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त गणों, प्रभु श्री राम जी ने सीता जी की विरह व्यथा हनुमान जी के मुख से जैसे ही सुनी तो उन्होंने सुग्रीव को कहा कि हे वीर सुग्रीव जी, अब अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो और यहां से लंका की ओर प्रस्थान करो। इस प्रकार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वानर दल ने किष्किंधा से चलकर समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया। उधर लंका में जैसे ही रावण को श्री राम और उनकी वानर सेना के आगमन का समाचार मिला तो उसने अपने सचिवों से विचार विमर्श आरंभ किया। उसी समय रावण का अनुज विभीषण भी राज्यसभा में आ पहुंचा और रावण को यूं समझाने लगा।

दुख देई ताकि मति पहले हर ले। इसी प्रकार रावण की भी मति मारी गई है, आज उसे नीति और ज्ञान की बातें नहीं सुहाती। जब विभीषण ने उसे नीति समझाकर कहा कि सीता को वापस करके श्री राम का भजन करो, तो उसने क्रोधित होकर विभीषण को लात मारकर अपमानित करके सभा से बाहर कर दिया और विभीषण रामादल की ओर चल पड़े। जो ही विभीषण वहां से चले तो रावण समेत सभी राक्षस एवं लंका नगरी आयुहीन एवं ऐश्वर्यहीन हो गई। विभीषण आकाश मार्ग से समुद्र पार करके प्रभु श्री राम जी की शरण में पहुंच गए। दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विभीषण जी बोले,

आत्माओं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने विभीषण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो विभीषण जी बोले, हे प्रभु, वैसे तो आपके एक बाण से ही करोड़ों सिंधु सूख सकते हैं, परंतु प्रथम उपाय विनय ही है। समुद्र आपके कुल गुरु हैं, अतः इनसे विनती करके रास्ता मांगो। तब श्री राम जी समुद्र तट पर कोश का आसन बिछाकर हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके समुद्र से प्रार्थना करने लगे। परंतु जब 3 दिवस बीत गए और कोई हल नहीं निकला, तब श्री रामचंद्र जी को क्रोध भर उठा और श्री रघुवीर जी बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं एक ही बाण से समुद्र को सोख दूंगा।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अतिशय प्रिय भक्तों, प्रभु राम की लीलाएं भी अत्यंत चमत्कारी है। जिस भेद को प्रभु जानते थे वो समुद्र से पूछ रहे हैं। प्रभु श्री राम ने हर स्थान पर मर्यादा का पालन किया है, कहीं भी मर्यादा भंग नहीं की, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और प्रभु का बड़प्पन देखिए कि नल और नील को श्री भगवान ने कैसी बढ़ाई दी। करुणा के सागर ने किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखा। ऐसे दयालु कृपालु सुखदायक मैं दिन रात भजता रहूं। जय श्री राम।

प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु राम के कृपा से मैंने आपको श्री सुंदर कांड का श्रवण कराया और आपसे यही आशा है कि इस सुंदर कांड के ज्ञान को लेकर आप अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएं। जय श्री राम, श्री राम। विश्व के सभी प्रेमी भक्त आत्माओं, जैसे कि आपको मालूम है कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है, इसीलिए आप इस लंका कांड को सुनकर अपने जीवन की सारी बुराइयों को दूर करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण का छठा कांड यानी लंका कांड।

सौ योजन के समुद्र पर नव निर्मित सेतु की सुंदरता को निहारकर भगवान श्री रामचंद्र जी भाव विभोर हो उठे और बोले, इस स्थान की महिमा अवर्णनीय है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। और वहाँ श्री रामचंद्र जी ने विधिवत शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की। इस स्थान का नाम रामेश्वर नाम से प्रचलित हुआ, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर की स्थापना करके प्रभु श्री राम जी ने सेना सहित सेतु पार किया और सुवेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी को जब पता लगा कि समुद्र पर सेतु बनाकर श्री राम जी वानर सेना सहित लंका के निकट आ गए हैं, तो वो रावण को यूं समझा,

प्रभु प्रेमियों, जब सुवेल नाम के पर्वत पर बैठे प्रभु श्री राम जी ने विभीषण, हनुमान, जामवंत आदि से आगे की रणनीति के विषय में पूछा, तब जामवंत जी बोले कि हे करुणायतन, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मेरे विचार से बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा जाए। भक्तजनों, जामवंत की ये बात सबको ठीक लगी। तब श्री राम जी वीर अंगद को निकट बुलाकर बोले, हे बाली कुमार वीर अंगद, तुम मेरे कार्य से लंका जाओ और रावण को इस प्रकार समझाना जिससे उसका कल्याण हो और हमारा भी कार्य बन जाए।

सज्जनों, राजमद में चूर रावण को बाली पुत्र वीर अंगद ने भांति भांति से समझाया, प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रताप बतलाया, प्रभु के बल का भय दिखाया, परंतु काल के वशीभूत हुए रावण ने एक भी नहीं मानी, एक भी नहीं सुनी, बल्कि अंगद के सन्मुख अपने बल का वर्णन करने लगा। परंतु कुमार अंगद ने जब कहा कि हे रावण, तुम वही बलवान रावण हो जो मेरे पिता बाली की कांख में 6 मास रहे, तुम वही पराक्रमी रावण हो जिसे पाताल लोक में बच्चों ने बंदी बनाकर घुड़साल में बांध दिया था। हे रावण, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। तब क्रोध में आकर रावण अपने राक्षस वीरों से बोला,

जय जय श्री राम। भक्तजनों, वीर अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और बोला, हे रावण, यदि तुम सब ने मिलकर भी मेरा पांव हटा दिया तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। प्रभु श्री राम जी यहां से वापस लौट जाएंगे। जय हो। भक्तजनों, ऐसी अटल घोषणा वही कर सकता है जिसको श्री रामचंद्र जी पर अटल भरोसा हो। परंतु मेघनाद आदि वीरों पर जब अंगद का पैर हिला भी नहीं, तब रावण अंगद के पैर की ओर बढ़ा तो अंगद ने कहा, हे रावण, श्री राम जी के पैर पकड़। तो प्यारे प्यारे भक्तों, रावण लज्जा

प्रेमी भक्तों, जब हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी को बाहों में उठाए प्रभु श्री राम जी के सम्मुख आए तो श्री राम जी पर मानो वज्रपात हुआ। प्रभु के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब जामवंत के कहने पर लंका से सुसैन वैद्य को लाया गया। सुसैन ने नाड़ी परीक्षण के पश्चात बतलाया कि द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी यदि रात रात में लाई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। भक्तों, तब पवन पुत्र श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने चल देते हैं। उधर रावण ने कालनेमी नाम के मायावी राक्षस को हनुमान को रोकने के लिए

श्री राम जी के प्रिय भक्तों, जैसे ही भरत जी ने आकाश में देखा तो उन्होंने समझा कोई निशाचर अयोध्या नगरी पर पर्वत गिराना चाहता है। तब उन्होंने बिना फर का बांध चलाया जो हनुमान जी को लगा, और हनुमान जी श्री राम कहते हुए भूमि पर गिर पड़े। जब भरत ने श्री राम शब्द सुना तो दौड़कर हनुमान जी के निकट पहुंचे और पूछा कि हे भाई, तुम राम नाम उच्चारने वाले कौन हो? तब हनुमान ने सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि की सारी कथा भरत जी को सुनाई। तो भक्तों, भरत जी को बहुत दुख हुआ और भरत जी बोले,

फिर प्रभु श्री राम जी ने भाव विभोर होकर अंजनी लाल श्री हनुमान जी को गले से लगा लिया। उधर रावण को ये समाचार मिला कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए हैं। तो उसने अपने भाई महाबली कुंभकर्ण को जगाकर सारी कथा सुनाई। तो कुंभकर्ण बोला, हे भाई, तुमने जगदम्बा सीता का हरण करके ठीक नहीं किया, परंतु अब क्या विचार करना। और ये कहकर कुंभकर्ण युद्ध स्थल में पहुंच गया। कुंभकर्ण के अरण कौशल और बल के संग वानर भालू अधिक देर नहीं टिक पाए। तो श्री रामचंद्र धनुष बांध लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे।

जब रावण के पास कुंभकर्ण वध का समाचार पहुंचा तो रावण अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। तभी मेघनाद ने राक्षस राज रावण को धैर्य बंधाया और रात व्यतीत होने पर सुबह होते ही मेघनाद युद्ध के लिए चला। युद्ध भूमि में पहुंचकर महाप्राकर्मी मेघनाद ने श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। तब जामवंत ने मेघनाद का पैर पकड़ घुमाकर लंका में फेंक दिया। उधर नारद जी के कहने पर गरुड़ जी ने आकर श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया। उधर लंका में

दोस्तों सज्जनों, रावण सुत मेघनाथ के मरने के खबर सुनकर देवलोक से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व श्री रामचंद्र जी एवं श्री लक्ष्मण जी का निर्मल यश गान गाने लगे। तब हनुमान जी मेघनाथ के शव को लंका के द्वार पर रख आए। जैसे ही रावण को मेघनाद वध का समाचार मिला, तो जैसे रावण पर वज्रपात हुआ एवं रावण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। लंका में कोहराम मच गया। मंदोदरी एवं सुलोचना आदि बिलक बिलक कर रोने लगी। मेघनाद की पत्नी सुलोचना मंदोदरी से बोली,

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात करुणा की मूर्ति है। जो उनसे वैर बढ़ाता है प्रभु उसे भी क्षमा करके निज धाम प्रदान करते हैं। रावण सुत मेघनाद ने सदैव श्री राम प्रभु को अपना शत्रु माना, परंतु फिर भी दया सागर दीन बंधु श्री राम ने उसे अपने वैकुंठ धाम भेज दिया और मेघनाथ की पत्नी नागकन्या सुलोचना जब अपने पति के शीश के साथ चिता में जल सती हो गई तो उसे भी प्रभु ने अपने पावन

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जब प्रभु श्री राम जी रावण के साथ युद्ध करने के लिए चलने लगे, तब विभीषण बोला, हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है ना कवच है, तो बलवान रावण से आप युद्ध कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री राम जी बोले, हे तात, सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है, शौर्य धैर्य उसके पहिए हैं, सत्य शील ध्वजा है, बल विवेक दम पर उपकार चार घोड़े हैं, ईश्वर भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, विज्ञान ही धनुष है, निर्मल मन तर्कस है, सिद्ध ब्राह्मण एवं गुरु का पूजन अभेद

जब श्री रामचंद्र जी एवं रावण का भीषण संग्राम चल रहा था, प्रभु जी बार बार रावण के दसों शीश बीसों भुजाएं काटते थे, परंतु रावण के शीश और भुजाएं यथावत फिर जुड़ जाते थे। तब विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को बतलाया कि हे प्रभु, इसकी नाभि कुंड में अमृत है, अतः आप पहले उस अमृत को सुखा दीजिए, तभी रावण का अंत हो सकेगा। तो तब श्री रघुवीर जी ने अपने श्रृंग धनुष पर 31 बाण चढ़ाकर रावण पर छोड़े। बाण ऐसे चले मानो काल सर्प जा रहे, और उन बाणों ने लंकाधिपति रावण

मर्यादा पुरुषोत्तम दीनबंध भक्तवत्सल श्री राम जी, क्योंकि खरदूषण वध से पूर्वक सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराकर अग्नि देव से सीता जी का प्रतिबिंब लिया था, अतः अग्नि से सीता जी को पुनः वापस भी लेना था, इसीलिए अग्नि परीक्षा की लीला रचाई गई। इसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी, सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी, जनक दुलारे सीता जी के लिए स्वर्ग से पुष्प विमान आया, जिसमें बैठकर प्रभु परम पुनीता नगरी श्री अयोध्या जी की ओर चले। देवलोक से पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधर्व मंगल गीत गा रहे हैं, तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी का जय जय

0: सभी जानते हैं अहंकार का परिणाम विनाश की तरफ ही जाता है। रावण जो जानते हुए भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगे हमारा बल और पौरुष कुछ भी सफल नहीं होगा, फिर भी अहंकार को ही अपनाता है और परिणाम स्वरूप अपना विनाश अपने ही हाथों करवाता है। तो आप आदरणीय भक्तजनों से हमारा सुझाव यही है कि किसी भी तरह के अभिमान और अहंकार की बात अपने दिमाग में कदापि न लावे। मुश्किल काम है मगर असंभव तो नहीं।
1: जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

Pa Moria. Om Igdantaya Vidmahe Vakratunda Dhimahe Tanno Danti Prachodayat. आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कहते हैं कि रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा

है सुबह सवेरा, आप सभी को हार्दिक से बधाई है, हार्दिक से और हार्दिक से बधाई है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। करो दिन की शुरुआत मधुर वाणी के साथ, उम्मीद से भरी एक नई सुबह, एक नई सुबह में आपका स्वागत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ भी है तेरे दिल में, सब उसको खबर है। ए बंदे तेरे हाल पर, ए बंदे तेरे हाल पर भगवान की नजर है। उसके होते हुए तुम क्यों परेशान है? भगवान के चरणों में तो हर समय का और हर समस्या का

आते अचिरेणाधि गच्छत। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण को अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल

सभी प्रभु के प्रिय है, इसे आप मानो या ना मानो, बल्कि ये बात सच है। आज आप जो भी कार्य, आप जो भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, आप सभी को इस कार्य में सफलता प्राप्त होवे। हम यहाँ से भी याद करते हैं जो दुखित परिवार है, यही विनती है, प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से, जो दुख के घड़ी है वह अवश्य से दूर हो जावे। कहते हैं कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भगवान हमसे जो भी लेते हैं ना, उसे हमेशा हमको दुगना वापस करता है। तो इसमें आप सोचो, क्या अच्छा करते हो तो आपको दुगना भी अच्छा मिलेगा।

हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो रिश्ता सही हो, जो रिश्ता सही हो, उसी पर चलाए रखना। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना।

तो सही है, अभी जो मिला है पता नहीं कहाँ कैसे कब होगा। ये शरीर हमको मिलेगा या ना मिलेगा इससे तो आपको ना पता होगा, मेरे ख्याल से मुझे तो ना पता है। इसलिए जो भी करना है आज ही करो, अभी करो और अच्छा करो। कहते हैं कि कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है, कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है। हम इंसानों को ये चेतावनी है कि ऊपर हमारा भगवान बंद आंखों से हमें देख रहा है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, परमात्मा को निरंतर याद, जी हाँ, याद करते रहो।

इतनी सुंदर भजन कि चल मन चल बाबा के धाम, चल भोले की धाम। ईश्वर की उपस्थित हर जगह होती है, यानी कि कण कण में भगवान है। सिर्फ उसे देखने उसे देखने वाला, उसे महसूस वाला होना चाहिए। कहते भी कि परवाह मत करो, परवाह ना करो, चाहे जमाना खिलाफ क्यों ना हो, बस उस रास्ते पर चलो, उस रास्ते

की तारीख आज का दिन हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और आपको हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और ये भी कहती हूँ कि

हर साल हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, गीत में है भी और अवश्य इसमें सच ही होगा। शुभ दिन के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए, वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआई की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे, आनंद लूट ले बंदे, प्रभु के बंदगी का न जाने कब छूट जाए साथ।

पद्माशरीन रफी जी की आवाज में। कुछ दर्द भरे गीत आपके लिए पेश हो रहा है।

हाँ बता दो मेरे हुजूर कि आपके नाम क्या है, और इस बार लेकर चलते हैं ये वादियाँ, खूबसूरत है वादियाँ हैं, इसके बारे में हम सुनेंगे। फिल्म का नाम अभिलाषा।

बहुत खूबसूरत गीत यहाँ से लता जी और रफ़ी जी की आवाज़ में हमने श्रवण की है, वा दिया मेरा दामन आपसे प्यार हुआ है।

0: कितना अच्छा बात ना कि प्यार हो गया है, होना चाहिए भी।
1: अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब,
0: क्योंकि प्यार से यह तो सारा सृष्टि बन

इस बार हम श्रवण करेंगे गीत जो फिल्म ससुराल में गाया गया है और इस बार है लता जी की आवाज़ में।

हाँ कहीं ये वो तो नहीं कि बात हम यहाँ एक मज़ेदार दिल छू जाने वाले गीत आपके लिए सेलेक्ट करके रखी हूँ। और गीत का बोल है, मुझे दर्द दिल का पता नहीं था आप क्यों मिल गए, ये भी होता है।

ऐसा हो जाता है जिसके आप नहीं सोचते हैं वहीं पे जाकर दिल लग जाता है, और जब दिल लग जाता है और एक तरफा प्यार रहे तो ऐसा ही गीत सुनना पड़ता है।

द नाइटिंगेल जी के आवाज में यूं हसरतों के दागने का दिन आख्तब फैफ तक यह पिक्चर है, ये फिल्म है और फिल्म का नाम है अदालत। हाँ, उसी फिल्म से निकाल दिया गया है। एक बार फिर हम सुनेंगे इस बार। एक बार फिर लता जी की आवाज में दिल अपना और प्रीत पराई।

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हम बहुत प्यार के साथ पंडित जी को स्वागत कर रही हूँ और पंडित जी के मुखारविंद से हम मिलकर सुंदर सा कथा श्रवण करेंगे। पंडित जी आप आकाश में हो।
1: नमस्कार, धन्यवाद जी।

ஏவம் நாராயண பரம் பிரம்மா நாராயண பரம் தபாம் நாராயணோ பரோ தேவா சர்வநாராயண சதாம் ஓம் நீலம் புஜிஷ்யாமல கோமலங்கம் சீதா சமாரூபித்வாம் பாகம் பாடு மகாசாயிக சாருசாபம் நமாமி ராம ரகுவன்ஷநாதம். ஹரி ஓம் நம சம்பவாய ச மயூபவாய ச நம சங்கராய ச நம சுவாய ச சிவசராய ச முக்ஷுக்ஷரூப் ஈஸ்வர் கு நமஸ்கார். சம்சாரிக் சுக் தேன் வாலே பிரபு கு நமஸ்கார். ஆனந்த் தேன் வாலே பிரபு கு நமஸ்கார். மங்கள்மய ஈஸ்வர் கு நமஸ்கார். ஔர் அத்யந்த் ஸ்வரூப் ஔர் கல்யாணகாரக் ஈஸ்வர் கு ஹமாரா பாரம்பார் நமஸ்கார் ஹோ. सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाके था मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके राधे उफान के जो मालिक हैं मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूं जो समय प्रदान किया धर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे हर बुध की तरह जहाँ प्रसन्नता जी ने रेडियो फोन को माध्यम से आप कितने अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनने वाले जैसा स्क्रिप्ट मालूम है पिछले सोमवार को हम आप जाकर करके गणेश चतुर्थी मनाए ना मंदिर में अपने घर पर अनेकों स्थान पर। चलो उस पे विचार किया जाए गणेश बाबा के उत्पत्ति कहाँ से हुआ उनके प्रथम पूजा हम क्यों करते हैं उस पर थोड़ा विचार किया जाए। तो एक राक्षस राक्षस का नाम है आकाशवाणी के सुन तारकासुर और वह ऐसी शक्ति प्राप्त किए थे कि उनको कोई वध नहीं कर सकेगा कभी नहीं। लेकिन उसने कहा था वरदान में कि शंकर बाबा के बेटे उनके पुत्र द्वारा हमारा मृत्यु हो सके नहीं कभी नहीं। और आप जानते हैं कि शंकर बाबा विवाह कभी नहीं किया था तो जा करके शंकर बाबा ने तारकासुर राक्षस के कारण जाकर गौरा पार्वती माँ के साथ पानी ग्रहण हुआ यानी विवाह हुआ। और जा करके वो जिनके हम जानते कार्तिका वही जा करके राक्षस को तारकासुर को वध किया। अब चलो विचार किया जाए कि गणपति बाबा को उत्पन्न कहाँ से हुए मेरे ख्याल में अनेकों बार गाथा सुन ही चुके होंगे ना। एक बार ऐसे होते हैं कि गौरा पार्वती माँ गए स्नान करने के लिए टूटी भाषा हम कहोगे नहाने के लिए और अपने देह से अपने शरीर से अपने दोनों हाथ से मल कर करके वहां पर उत्पन्न किया कि नहीं गणपति बाबा जिसे बोलते गणेश गणेश गणपति बाबा को अपने शरीर से जा करके मैल से उनको उत्पन्न किया और जा कर कहे आप हमारा बेटा है और गणपति बाबा जा करके गौरा पार्वती माँ को चरणों को प्रणाम किया तो वहां पर गौरा पार्वती माँ कहे बेटे आप यहाँ पर रखवारा करना ताकि घर के भीतर कोई अंदर ना आ सके। कौन गौरा पार्वती माँ कहा कि नहीं गणेश बाबा से अपने बेटे से और गौरा पार्वती माँ चल गए स्नान करने के लिए। हम हमेशा बोलते स्नान नहीं स्नान करना चाहिए स्नान तो वहां पर गौरा पार्वती माँ स्नान करने लगा और उसी समय भोलेनाथ शंकर बाबा देव का दे जो भंडारों को भंडार भरने वाले हैं वहां पर आ जाते हैं और भीतर जाने के लिए तो वहां गणपति बाबा ने उन्हें जाने नहीं देते हैं। एक बार दो बार तीन बार समझाया जो नहीं समझे बात नहीं माने तो भोलेनाथ शंकर बाबा नाराज नहीं होते हैं। जो नाराज होते हैं आप जानते क्या करते हैं अपना त्रिशूल चलाते हैं त्रिशूल से जा करके गणपति बाबा का जो सिर है उनके अलग कर दिया
अब वहां पर जा करके भोलेनाथ शंकर बाबा भीतर जाते गौरा पार्वती माँ के पास, तो गौरा पार्वती माँ पूछते हैं कैसे आप भीतर आ गए। वहां पर जा करके भोलेनाथ शंकर बाबा गौरा पार्वती माँ से कहे हैं, वहां पर एक मेरे का रास्ता रोकते थे तो मैंने उनको त्रिशूल से उनको सिर के अलग कर दिया। वहां पर गौरा पार्वती आरोधन करने लगा तो भोलेनाथ शंकर बाबा कहे ठीक है, नोर्दकांत उत्तरायण और जो कुछ वस्तु पाइयो उसके ला के लइयो, तो जा करके मैं गणपति बाबा जीवित कर दूंगा। तो आकाशवाणी के सुनने वाले आप जानते हैं जो हाथी है, हाथी सिर ला करके गणपति बाबा के जा करके उनको वो सिर जो है किनके सिर हाथी किसे गणपति बाबा के ला करके लगा दिया। टूटी भाषा में कहूं वहां पर सिर धर दिया। और उसके पश्चात इसमें हमें ध्यान करना है कि क्या वो हाथी के, हाथी बहुत शक्ति है, हाथी जो चलते हैं तो हमेशा अपना सिर नीचे करके चलते हैं। एक फिर से बात दोहरा रहा हूँ, हाथी बहुत शक्ति है लेकिन हाथी जो चले हैं ना तो अपना सिर नीचे कर करके, इससे हमें आपको ज्ञान मिलते हैं कि ऊंचे ऊंचे सभी चले नीचे चले ना कोई, जो नीचे चले सबसे बड़ा हो। हमें जा करके अहंकार के जो नहीं करना है। अब चलो गणपति बाबा और भोलेनाथ शंकर बाबा कितने संतान थे, कार्तिका आप जानते हैं, गणेश बाबा जानते हैं, लेकिन एक बेटी भी था, उनका क्या नाम, अशोक सुंदरी थी। तो तीन संतान की ने भोलेनाथ शंकर बाबा के, चलो विचार किया जाए जो गणपति बाबा जो है ना, तो गणपति बाबा के एक दांत जो टूटल है, एक दांत टूटल है उसके अर्थ बतई के नसी होते हैं कि जीवन में कुछ भी कमी हो जाए मैं फिर भी हमें जा करके उस पे तर्क वितर्क ना करके अपना जीवन हमें व्यतीत करना है। कौन, जो एक दांत टूटा। और दूसरा जो सूर है ना गणपति बाबा के, तो उसको जो हम घुमा दे ऐसे उल्टा तो क्या हो जाए, ओम शब्द हो जाता है एक। और दूसरा अर्थ होते हैं कि बहुत दूर तक उसके महक आते, बहुत दूर भी देखते हैं। तो हमें आपको भी अपने आप को भी आगामी कोमलताइत हमें भी कोशिश करना चाहिए प्रयोग करने के लिए, आगामी कुछ आने वाला है। तो और तीसरा जो है, तीसरा जो है भोलेनाथ शंकर बाबा यानी गणपति बाबा के कान जो बहुत बड़े बड़े हैं। कान क्यों बड़े हैं, उसके अर्थ ये है कि अच्छा गाथा सब कुछ सुनो, प्रेम से सुन करके श्रोता बन के जीवन व्यतीत करना है। और गणपति बाबा के जो पेड़ जो है ना, पेड़ भी बहुत बड़ा है, गणपति बाबा का पेट भी बड़ा, उसका अर्थ ये है कि नाना प्रकार के सब बात भी सुन करके अपने आप में रखते हैं। कौन, गणपति बाबा सब बात सुन करके अपने आप में रखते, उसको प्रचार नहीं करते अच्छा या खराब, सब बात पेटे में रखते। कौन, गणपति बाबा, कान के मतलब आपके सुनाए, तो ये है गणपति बाबा। कौन है ये गणपति बाबा, चलो गणपति बाबा के प्रथम पूजा हम आप क्यों करते हैं। हमारे सनातन धर्म में अंतर्गत जो भी कार्य हम सब करते हैं तो पहले ओम गणपति बाबा के, ओम गणन में गणपति गुम हवा मही प्रियनम प्रियापति गुम हवा मही निधनम निधपति गुम हवा मही। प्रथम गणपति बाबा ध्यान करके हम लोग कार्य करते हैं, तो उसके पश्चात जितने कार्य हो है सब मंगलमय हो। घर से जो हम निकले तो गणपति बाबा के ध्यान करें। प्रथम बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, घर से परेशान जो हम हो तो गणपति बाबा ध्यान करके हम अपने घर से बाहर निकले। और गणपति बाबा किसे बहुत प्रिय है, लड्डू जिसे बोलते मोदक और दूबा घास जो है गणपति बाबा उनसे बहुत प्रिय है। चलो जा करके
प्रथम पूजा हम क्यों करते हैं गणपति बाबा के। एक बार ऐसे हुआ, सब देवी देवता जा करके, सब देवी देवता एकत्रित होते हैं, आपस से वार्तालाप करते हैं हमारा पूजा पहले होना चाहिए वो कोई हमारा। तो वहां निर्णय किया गया कि सर्वप्रथम जो पृथ्वी के परिक्रमा कर करके पहले आ जाए तो उसके पहला पूजा होगा प्रथम। सब देवी देवता वहां से प्रस्थान हुए, लेकिन एक बात अभी नहीं बताया आपसे, मूषक जो है टूटी भाषा हम कहो जो मूस है ना, उसके सवारी गणेश बाबा क्यों है? उसका अर्थ ये है कि हम जाकर छोटे बन के जीवन करें, छोटे बन करके अपना जीवन व्यतीत करें अहंकार से नहीं। जैसे एक बड़ा पेड़ है ना, एक बड़ा पेड़ हवा लगेगा तो पहले कट के यानी गिर जाएगा, लेकिन दुबा घास के जड़ जो है आनी तूफान आएगा झुक के फिर खड़ा हो जाएगा, तो उसका मूस के सवारी है। तो सब देवी देवता वहां से प्रस्थान हुए संसार के परिक्रमा लेने के लिए, सब तो वहां से चले गए। तो जाकर गणपति बाबा कहाँ पर गए? अपने माँ के पास, गौरा पार्वती माँ के पास। उनसे पूछे पिता कहाँ है? तो गौरा पार्वती कहा जब देखो तो आपके पिता तो समाधि में बैठे रहते हैं नेत्र बंद करके। गणपति बाबा कहे माँ विलम्ब ना करो, अपने माँ के हाथ पकड़ के ले जाकर यहाँ पर भोलेनाथ शंकर बाबा वहां पर बैठा करके आरती से एक बार नहीं सात बार उसको परिक्रमा कर करके गणपति बाबा वहां पर गए जहां पर निर्लय होना हो चाहिए। वहां पर जा गणपति बाबा सर्वप्रथम पहुंच गए। देवी देवता वहां से आते हैं, सब देखते गणपति बाबा यहाँ पर हैं। वहां पर निर्णय किया गया कि आज से प्रथम पूजा गणपति बाबा को होगा। सब देवी देवता का ये कैसे हो सकेगा, कैसे परिक्रमा करके जल्दी आ गए? तब वहां पर निर्णय किया गया कि आप सब एक बार परिक्रमा किए हैं और गणपति बाबा ने सात बार अपने माँ और पिता के परिक्रमा करके आए हैं, तो आज से प्रथम पूजा गणपति बाबा को होगा। कहने के तात आकाशवाणी के सुने आलू, जो अपने माँ और पिता जो दिल हम खुश किए हैं तो मंगलमय जीवन हमारा व्यतीत होगा। तो आकाशवाणी के सुन मैंने संक्षेप में आपके संकेत किए गणपति बाबा के, जो भी हम कार्य करते हैं पहले गणपति बाबा का हम ध्यान कर करके तो घर से निकलते हैं, का विवाह संस्कार जहां भी हो पहले गणपति बाबा के नाम हम लेते हैं। आकाशवाणी के सुन वाणी द्वारा अपना पौरुषम विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। हरि ओम, शांति शांति शांति, हरि ओम।

प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारविंद से सुंदर सा कथा और बताई हम लोग के कि गणेश जी की ये हम लोग जो देखते हैं ना उनका पर उनका चित्र जो हम देखते हैं तो अनोखा दिखता है। और आज हमको पंडित जी बता दिए हैं क्यों ऐसा है। बड़ा सा कान, सूंड जो है, दंत दांत जो है, तो इसके बारे में हमको बता दिए से बड़ा सा उनका बॉल ऑफ बैग जो है ना तो उसके बारे में गणेश चतुर्थी जो था पंडित जी से बताए सोमवार को, और उसके बारे में गणेश के बारे में यहाँ से हमको श्रवण करा दिए। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आकर यहाँ से रेडियो द्वारा हम सबके सेवा की है। धन्यवाद पंडित जी। Ein Trainkondukteur mit Sander door Fettbiker zonder vervoerbewijs. Ja, als u gaat reizen met de trein en u hebt een fiets die u mee wilt, dan moet u ook een kaartje kopen daarvoor. Ja, daarna gebaat hij. Een treinkondukteur heeft een harde klap in zijn gezicht gekregen van een man die hij uit de trein had gezet omdat hij geen kaartje voor zijn fatbike had. De verdachte is duidelijk in beeld. Hem hier pe dekh rahe hain yahan unka surat jo hai is duidelijk in beeld en de politie is naar hem op zoek. और ये समाचार, ये जो हादसा हुआ है 1 जुलाई के देन हाग में मोरवैक स्टेशन मोरवैक पे एन इट इज ओक नित टूगेस्टान ओम ऑफ द पेरोन द फिट्स मार देस ट्वे हेर दे दत वेल दम सेन मेट सन सवार मेट हन ट्वे या एन एन फन स हात वेल नेचेस सेन फॉर बवेस एन फॉर द फिट्स gekocht, maar deze jonge vent had alleen een vervoerbewijs, maar geen kaart gekocht voor zijn fiets. En toen hij daarop aan, ja, de conducteur die lopen gewoon, ja, in de trein, om af en toe vragen ze ook naar vervoerbewijs om te controleren ofwel legaal of illegaal reist. Het is hun werk en het is ook een oogje in de zeil houden dat alles goed en netjes in de trein verloopt. En deze jongeman, toen hij erop aangesproken werd, had hij geen vervoerbewijs voor zijn fatbike, waardoor er dan een oneenigheid ontstond. En de jongeman die draaide gewoon een klap in het gezicht van de conducteur. Als je niet kan beheersen, hè? Ja. En als je fout bent, moet je ook dat kunnen inzien en accepteren.

आप सुनिए बात मेरे दोस्तों, अ पॉलिसी अगेंस्ट स्किट सिक्सेल्फ इन द हंड, ये भी अल्फा ऑन द रैन के समाचार है। द पॉलिसी अगेंट डी मांडा ओक्टन खवोंट इस खराक ऑफ द ट्रेनिंग्स लोकेशन ऑफ फंड पॉलिसी इन अल्फा ऑन द रैन हैव सिक्सेल्फ इन द हंड गेस्कोटन, दैट मेल्डन मेर्डर ब्रोनन फन ओमरूप वेस्ट।

मैं एलिफेंट्स बच के रहना, ये ट्रिक्स जो बनाए लेकर आते हैं। एक्सप्लोसिव ब्लास्ट रामन एट फ्लैट फ्लैट वोनिंग, यह समाचार है देन हाग का। बाय एन फ्लैट वोनिंग ऑन द रोबेंस हॉर्स इन देन हाग हैव इन द नाग वन डेंसडाग ऑफ वोंसडाग एन एक्सप्लोसिव प्लाट्स गेवोंडन। ja, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte een woning op de eerste verdieping beschadigd. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

फॉर हालफ तीन हो चला है, थ्री फोर हालफ तीन आज बुधवार के सुबह की कार्यक्रम है। 16 तारीख हो गया है, आज 16 तारीख सितंबर हो चला है। हाँ जी, समय जा रहा है जोर तोर से।

सो रोमांटिस, मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले, जब तक दिल में प्यार बढ़ा रहे, फरलिफ्त रहे, तो ऐसा ही गाना हम गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते, सारा संसार इतना सुकून से दिखता है, इतना प्यार से दिखता है। हाँ, यही भी आशा उम्मीद है और प्रार्थना है कि जो भी प्यार करता है उनका प्यार सदा सुरक्षित रहे, भगवान की कृपा उन सभी के ऊपर रहे।

साथ रफ़ी जी के आवाज़ में बहुत प्यारा सा गीत है। फिल्म का नाम आदमी। नेखंतीन अख्तन से अस्तक के ये पिक्चराइज

क्या बात है, कितने दर्द भरी और दिल छू जाने वाले गीत जो गाकर हमारे गायक और गायिका छोड़ गए हैं। सुनते ही हम स्तब्ध हो जाते हैं। एक एक शब्द सुनो और साज और संगीत जिसे दी है इतने अच्छे से मैच करते हैं। अस्त्रेल्ड द ओर है या अस्त्रेल्ड ओर है और देह में जो है तार तार जो है छू जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में श्रवण की है। फिल्म का नाम है दादी माँ, दादी माँ फिल्म का नाम है। कि जाता हूँ मैं मुझे अपना भुलाना। दर्द भरी बयान

बाबू सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म साजन से निकाल दिया गया है। इस बारे राधा बिना है कृष्णा अकेला।

0: किशन, तुम बचपन से यही एक धुन बजाते हो। कितनी मिठास, कितना दर्द है इस धुन में। कहाँ से सीखे हो ये धुन?
1: कहीं से नहीं, बस अपने आप उंगलियाँ इस बांसुरी पर चल पड़ती है और धुन निकल आती है।
0: मुझे भी सिखाओगे?
1: तुम सीखोगी? ठीक है, अब तुम मेरी तरफ पीट करके बैठ जाओ, अपने हाथ ऊपर करो

सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर बिड्रेव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 88 73. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद दे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से सिकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश का समाचार सुनाना है कि हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

ही रहेंगे और समाचार आप लोग को हम बताते ही रहेंगे। और हम चलते हैं जनता, हम चलते हैं और आगे को भैया गिरधारी बस्त्राइट कुरुपसी में स्पेशल तक रक्त लकमांग गिरधारी के है भैया, एक रूम है भैया गिरधारी एक रूम है। हाँ हमारे जनता गिरधारी एक रूम है और यहाँ बतावे गिरधारी फरीन किंग फन एक रूम से एक इकोनोमिस्ट इन सुरीनाम बोले करप्शी सुरीनाम के बोले एरनस्ट के फॉर्मन आने बहुत जबर बोले एरनस्ट के बोले है का करप्शी सरनाम में वो तो जिंदगी से है बाकी और ढेर हो गया भैया स्वामी गिरधारी।

और मुसाफिरे हो मैं यारो और चलते ही जाना है। ये गीत है जो आपको हमने सुना ही दिया है, हमारे यारो हमारी जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेकर चलते हैं। अब देखो भैया, सूरीनाम देश लेकर और पूरा पूरा दुनिया के समाचार आपको हम सुनाएंगे। जैसे आपको पता है, हर मंगलवार को शाम को 6 बजे हमारा प्रोग्राम को हम हर हाल करते हैं, और मंगलवार को, रविवार को शाम को, रविवार को शाम को 1 बजे हमारा प्रोग्राम चलते हैं, और शुक्रवार को 6 बजे हम लाइव भी प्रोग्राम करते हैं, यानी कि समाचार। सूरीनाम में बहुत गर्मी भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है बैना फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद भाई गर्म सूरीनाम में है। तो बताए गए हैगा 14 तारीख सितंबर के क्यूस खबीर बताई से बहुत जबर पानी बरसेगा, बहुत जबर बरखा आएगा। तो माता खरीखन बैठ फालन पारी पानी जबर बरसेगा। मित्र लोग इस दिन संद्रिम के बोले बकी चाहे उतरा पानी बरसी, गर्मियाँ उचने रही फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद है। दुस मेंसे दी इन सूरीनाम खान ऑफ जैन दिस यूले वेल फूले बोले लुक टेम्परेचर जो सूरीनाम के दरियन दर तक खराद है, सबसे लागी मारवाई नवरात्री इन दर तक खराद हमारी जनता। और बताए गए हैगा इन नाखर रविवार को पारा में और सगरो भैया बहुत गर्मी है, इतना गर्मी कैसे लोग सहीगा, वहाँ के लोग के इतना मुसीबत है वेर के बारे में हमारी जनता, गर्म के बारे में। और बोले हैगा यहाँ से जो आदमी जाए तो कौन कौन दशा हुई वहाँ पे गर्म से भैया। तो ये बात है, सूरीनाम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। यहाँ पे देखो बताए गए हैं कि यहाँ बताए गए हैं आने वाला हफ्ता में वेर ब्रेक पर हमारी बो के, और बहुत गर्मी बताई गई है। रात के सेल्फ जसन ट्विन तक खराद है, सवेरे सवेरे देर तक खराद हो जा भैया। और यहाँ बतावे संजा के द्रियन देर तक रात के सीफन ट्विन तक खराद हो जा है सूरीनाम देश में। हाँ वूस दाख के इस फिरन देर तक खराद गर्म होगा, डोंदाक के 35, फ्राइडाक के 34, सैटरडे के 33, संडे के 33 ग्रेड होगा, इतना गर्मी है सूरीनाम में। तो आप लोग के थोड़ा सूरीनाम के गर्म बता दी भैया, जो आदमी गर्म लोबी करे है तो आपको तो प्रॉब्लम ना है, बाकी हमारा मान के ना भाई रात दिन कपुआ ने इस पानी में और वही महल के हम बैठल रहती भाई हमारा मान के ना रहा ये गर्म भाई एक कांडत नींद। अब देखो भैया और आगे हम चलते हैं, दृक्ष मिलल है भाई सूरीनाम देश में, दृक्ष मिलल है। बतावे गए गाय को फैफंदर तक यार के आदमी राम लखन स्त्रात में रहे, राम लखन स्त्रात क्वाटा के गोसाई स्त्रात है और तो धूप जाने लगा भाई, वहाँ पे हाच मिलल है, कोकाइन मिलल है, मरवाना मिलल है। तो हम बोली तरी से बता दी लंबा चौड़ा लिखल है, लेकिन कोकाइन के चीज भैया उतरे हम बताई है जितना नूडक हैगा, ये बात है हमारी जनता। साथ साथ हम चलते हैं तुलन जानो है रोथनी लाइसनर के 25 तक यार के एगो नीजल अंदर है जो सूरीनामों में रहता रहा वो फरमेस्ट हुई गए कितना रोज से सपनों के खोजे है ओकर ओतो जाए के सरमक्का के रीवा में मिला गुतरों में मिला रहा आगे आगे लगल रहा एगो नीजल अंदर नीमर एंड फिल्म प्रोड्यूसेंट है फॉर ए लास्ट वो निकेरी में रहा सरमाका में रहा ओकर पलवान नीदरलैंड में ओके बहुत खोजे हियाँ से को हीलक रूप गई है कुत्ता उत्ता ले के ओके खोजे भैया मक्की अब्बे के कुछ पता ना मिले है 15 तारीख ऑगस्टस में ओकर उज्जरो तो किया सोरेंटो सरमक्का में मिलल है
Auro diezelfde dag gaf hij zijn laatste levensteken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem en ze. Or betaiga jehega. Betaiga jego swampu me milalesar makami 21 augustus ke. Or laisner ke se van khoje he. Verdachte kego pakri se S-A-J-S-N ke R-E ke aangehouden. Ryan Kenneth Torreal die eerder in onderzoek was gehoord. Maar toen nog niet al verdachte werd aangemerkt is nog steeds voorvluchtig. Ja, ik mila bhagal hai tab to kuch kar le tab to bhagal baate aur hua ke pk jon hai 26 augustus ke opsporing dhardesh ke aur me examen khoje hai pakad ke choran ke tu chhod diye bhaiya tab jao tu double kaam karo aur batave hega het word verdacht van onder meer moord medeplichting van moord doodslag bhai lekar upar zware mishandeling opzettelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie. Politie beschouwt hem als vuurwapen en vlucht weer gevaarlijk door naar de Mia Bhangal he. De appu vlucht weer vuurwapen ke ba aupe te chordeluke verhoor kerke. Dat is toch erg mensen. Familie ervaart groeiende machteloosheid. Familie van Leisner woont in Nederland en zegt nauwelijks zicht te hebben op de voorgang van een onderzoek. Bole hoe ze ik kopen dan jane ketra onderzoek hoe he. Dat u jane scriptie te Suriname me bharale bhaiya. Zelf ego Braziliaan ke Colombiaan drugs dealer बन रहा सिपाही में असिपाही ओके खोल दे इसे सिपाहियन वेल बन है सो एरिक इस दैट इस श्रीनाम में से द पुलिसी सेंस अलव दार नीट नीट अलमार मा हेल फिर पुलिसी सेंस दार हेल एरक करप में से सेंस नीट वर्त्राव वैस इन इधर दी ओं सेल्फ ओं से दंग बार ओके पलवार बोले है और खो जाए हुए है 10 कुत्ता 15 आदमी गए ले 2 तो 6 सितंबर हुआ फर्स्केलने लोकेशन से मक्का में खोजे है अंदर में द फिन प्लास फन ऑटो व्राक है perceel van de verdachte RE en aangrenzende terreinen waren onderzocht. Ook het wrak zelf werd met de honden onderzocht, mensen. Bolle de zoekactie leverde geen lichaam op. Politie maakte 8 september mee bekend kreeg die aanwijzing waren verkregen voor verdere strafrechtelijke onderzoek. Over de aard daarvan zijn geen mededeling gedaan. Toen ja, wat we hebben, Rotnieke, ik kus voor naar Milal. Wij leggen ons neer bij zijn vermissing. Al dus Nathalie Leisner, ook haar familielid. Toen ja, we hebben een hele rij van Rotnieke waren mee. Kijk, kap, kahan, kontje, ook haar waren mee onderzoek bij haar. Maar tot nu toe is geen enkele spoor mensen. Aplon Jano, Helenke, bij jou, Skoutura, Auri Nikergera, Helenke, ze hebben Marcelino, Helen, I, hoi. Bond voorzitter zijn verkiezing mee gejitel he. Marciano Helling blijft voorzitter van de OGM werknemersorganisatie. John EBS kega. Wahan pakke EBS ke vakbondsleider. Ze hebben pinsen zijn verkiezing. Zijn team Renewable won donderdag de bondsverkiezing van team Bondru. Helling zegt dat de plannen van de korte termijn vooral gericht zijn op het voortzetten van de activiteiten. Op het AW ook wordt momenteel gewerkt aan de afronding van de collectieve arbeid overeenkomst van CAO. Hellingsbole EBSK, hoe ik bondvoorzitter, opbole dat de kwestie nog achter de rechter is. EBS in de zaak veroordeeld, maar heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. Europa Brunswijk. भाई जोन हैगा वो डायरेक्टर हैगा और हेलिंग से उसे भैया बड़ा गड़बड़ है और सबन्ना मांगतरा ई जीते मा वो जीत गए भाई अब जीत गए अब बॉन्स फोर्सिटर हेलिंग्स जोन हैगा मार्शियानो हेलिंग्स अब कोंची कोंची डायरेक्टर के साथ करी दीन मार्कन में भैया और रुसलान दीन मार्कन के गो हेलीकॉप्टर के लिखत अन लिखत अन कोखल से दागी से हेलीकॉप्टर में यही दीन मार्कन के जो प्रेसिडेंट है बड़ी गुस्सा में है और बोले देनी मार्कन ऑन स्टेम ओम अफस्कित लिख कोकल्स दो रूसी से स्किप दागी से एकर मारे में प्रीमियर मेटी फ्रेडेक्सन हेफ एट अफस्कित फॉर लिख कोकल दो रूसी से फ्रेगट वेरओर्डेल्ड एज अ रुकलोसे एक्शन द लिख कोकल्स राक्टन फॉलोइंग दीस क्रेक्स वन मंडे आवर बेना एन मिलिटरी हेलीकॉप्टर बतावे बच गए को हेलीकॉप्टर के दाग
maandeur. Of toen aan het Denemarken is namelijk. En deze Russische acties zijn bedoeld om de intimiderende en om ons te verdelen. Schrijft de Frederiksen in de verklaring. Opleggen, dat zal niet lukken. Volgens Denen was de militaire helikopter bezig met de routineoperatie om foto's te nemen van een Russische fregat toen de opeens schoot met lichtkogel. De Russische schip bevond zich in de internationale wateren in de buurt van Getser. Dat is de zuidelijke plaats van Denemarken en ligt ten noorden van de Duitse Rotsok. Toen ik er waren mee in Rusland, moeten we oppassen mensen. Want er ben na volkertje, dan wordt de oorlog allemaal nog heftiger en heftiger en heftiger. अब तुलुन्याने स्ट्रांथ हॉर्मूस में भैया तेल ओल हुआ पे लेक भाईल है ग्रीन पीस जो नहीं का एक्टिविस्ट है का फेव ओली फ्लेकर इन स्ट्रांथ फन हॉर्मूस सिख बार बोले देखा है तो एक बारे में इसे बांचे ब्रुसेल वेल मिग्रांसी नोटवेर बेरखरूत तुस्त्रूम असील सुकर्स के बारे में तो जाने ब्रुसेल जो नहीं का असील सुकर्स आवे है यूरोपीय कमिसी बोले है वुंसदाग के कि हुक फॉर स्केल मिग्रांसी जो नोटवेर में बनल है Hij antwoord op de onverwachte stroom asielzoekers naar Spanje een exclave. En als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort, melden diverse Brusselse bronnen. Duitse politica zal woensdag aankondigen in haar State of the Union van de Europese variant van de troonrede. Jullie mee. 80.000 migranten, Marokkose geile, Spanje, obole het leidde tot geschokte verontrustige reactie in Europese landen die vooral vreesden dat veel van de migranten naar Europa zouden doorreizen. Maar Chanta, Zelensky blijft energiesector aanvallen in Rusland. Kiev reageert, ik er maar mee. Obole Rusland, toen Amerika, Oekraïne kitra dage op ulta Oekraïne Rusland kebi dage op Rusland blijft onlangs zo maken door de Amerikaanse Donald Trump gemeld akkoord doorgaan met de aanvallen van doelen in energiesector stelde Oekraïnse president Zelensky hij schrijft dat Oekraïne op die aanvallen reageert bole je hamme dage ga Rusland te bole reageer kere Rusland verklaart dat zowel Rusland Oekraïne ermee had ingestemd om te stoppen met de bestoken van energie-infrastructuren zoals olie-raffinaderij, elektriciteitscentralen die de afgelopen maanden veel zijn aangevallen. Tot elke waren met Marjanta, Jezebel, Samantjaar, Amkus Lief, Radio Fahunke Madjimse.

तो दोस्तों एक दो समाचार हम सुनाकर हम खत्म करेंगे, हमारा समाचार हो गया है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, बाय बाय, जॉय जॉय, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

और अनोखो अन अन अखियों की झरो के बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंडा लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।

इस तरह से हमारे जिंदगी में शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएं। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप

सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे। हमारी आ रही साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका यानी क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फॉर जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिक लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग। और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर। और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

और दोस्तों, तू मेरी आसमां परे और नए गीत, कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे, करेंगे मत कर इतना गुरूर। कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं, तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ मैं।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती। और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत धुनिया पे, और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमीं पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोरा ना दिल हमारा।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ। और कौन आएंगे? महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तू पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे, तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत के ओर हम बढ़ते हैं। आम सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन। सौतन नहीं खंती इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मौफी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है किशोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू की ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है? नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं। कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वोर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जी फन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए। और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है? काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

हरेक काम जो रिव्यू किसे लेकर आना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाहौर हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सीफ तक 3 से 5 2 8 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

की महफिल सजाने लगी, दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुन

और है नया एहसास है। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाजों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

और पुस्सी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: जानदा नहीं मैनू, नेहा कक्कर हूं मैं।
1: कक्कर हूं मैं, क्या बात है। हाइड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का क्याओ। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा सिरपौल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this smart?
1: What is what?
0: What's this here, so? Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा, वादी का रामसुकुल और स्टीफन बैताली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं, संजय शिवराम और वादिका रामसुकुल जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे संजय शिवराम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में। इंद्रनील रॉय आ रहे हैं प्रोग्राम में और वो आपको क्या सुनाने वाले हैं। वो तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है। इंद्रनील रॉय और वादिका राम सुकुल जी।

ओ तुमसे दूर रह के भी आप सुन रहे थे इंद्रनील रॉय और वारिका रामसुकुल जी की आवाज़ में दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, धीरज लाला राम प्रोग्राम में आ रहे हैं वारिका के साथ।

अभी आप सुन रहे थे दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। रानी दत्ताई आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मैशअप के साथ।

रानी दत्ताई जी की आवाज़ में ये यानी आप सुन रहे थे ये मैशअप। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। प्रशांत रामचंद्रन आपको सुनाने वाले हैं, साथ में वादिका रामसुकू के साथ। मैं प्यासा तुम सावन,

अभी आप सुन रहे थे मैं प्यासा तुम सावन, प्रशांत राम जतन और वादिका राम सुकुल जी प्रोग्राम में आपको सुना रहे थे। एल्सा लिसा की आवाज़ में हम पेश करते हैं एक चटनी मैशअप, चलिए मिलकर सुनते हैं।

एल्सा लिसा के आवाज़ में भी आप एक मैशअप सुन रहे थे सुनने वालों, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। चलिए एक मैशअप हम और पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, वादिका राम सुकुल जी की आवाज़।

वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे एक मैशअप और धीरज लाला राम के साथ में वादिका प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मेरे सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे वारिका राम सुकुल और धीरज लाला राम जी की आवाज़ में। जॉनी उदित राम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों अमीरों की दुनिया।

जॉनी उदित राम जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे अमीरों की दुनिया में। सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं दुपट्टा।

सविता सिंह आपको सुना रहे थे दुपट्टा। वीरेश उदित राम जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, चलिए मिलकर सुनते हैं।

बातें दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सेफन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति ए ने सैफ तक का ये गीत है। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। आप सुनोगे, मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सही बंदक का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 405 तक या 505 तक, बहरहाल रौंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगित ए नसीबे तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया। फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं। जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था। अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाए के सिलसिला हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन तक का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओ फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

सूर्य स्वाधिकार जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं आओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से

सारी दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रूना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रूना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है। जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

0: चले
1: करते हैं प्यार समझ में आया
2: तकरार समझ में आया।
1: चली हो कहाँ देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: समझने आया,
1: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
2: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती एन एफ आई इफ्तिखार रफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेती द्रीन तख्त एन एफ आई इफ्तिख से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रियन तख्त का। आप चूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर अगर आप चूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

नमस्ते शय नमस्ते शय नमस्ते शय नमो नमः हरिओम एकदम भैया बिरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग हमारे प्रिय प्रिय साथियों पावन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार की जिम लोग का सागर सबरवा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पावन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरि ओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्ण दत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्टिस गोथ खलिंग में संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। ये आशोमीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो जी साल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप से भी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं थी फील प्लेजियर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फन मांडा टू फ्राइडा तेजस कंतोर उर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंतोर 070-365-2247 और स्टूडियो का तार का नंबर है 070-362-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोग के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। एन नहीं तो vergeten है onze kwaliteit is altijd uw garantie en natuurlijk natuurlijk natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Fahon Industani Radio toch? उनसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके हम लोगों का जबरदस्त और बड़का भैया हम लोगों का गुरुदेव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त अनाउंसर साथी और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कराओके टीम का लीडर डॉन एंड ओली माएस्ट्रो चंद्र शैन गंगा जी के जरिए आप एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे। जिस तरीक से भाई गंगा जी ने आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं ये आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि आज का उनका जो पेश किया हुआ प्रोग्राम था बड़ी जबरदस्त था आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तय दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई गंगा जी और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया हो या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे है या तो विवाह संस्कार के तैयारियां में भी लगे होना ये भी हो सकता है। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं जश्न मना रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब यही मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए ना। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है आपके माँ आप एक गमी में हो मातम में तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए बेहतर हो जाए चंगा हो जाए। नित फरखेत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु मतलब और
हो सके तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें इशाते करते रहना। फनार्थ बीतर्स का कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और हो सकता है कि कल परसों या आज आप कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु। मूर्ख इस वीर दख है दिन पे दिन अपने आप पर थोड़ा और जोर तोर से विश्वास बढ़ाते रहना, साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना तो हो सकता है बंधु कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी ना, दत है वो तो इस ऑब्सकोल अब वंस वेयर इट ओवर ऑल क्लियर नेवर गिव अप ब्रदर नंगासीसा। सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बनाउट फॉर इट लिसनरिंग। देश में प्रवेश हुए तो फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम फेन फकंसी, और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पर जा रहे अब शुभ नर मेर वर्मत तो आपको भी एक शुभ यात्रा फेन फकंसी। तमाम लोग सुनते हैं फाहुन इंदुष्णानी रेडियो को फेन फकंसी एड्रेस इंटरनेट के जरिए इस मोगलक अपू टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप naar ons te luisteren, to abhi sunye faun indushnani radio kopiu vakantie adres. So bent u en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk Hamare Den Haag, Cherka, de one and only faun indushnani radio 24 hours at your service, mi guru. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ। आई डिफेंड ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या झुका लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसीलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे अब क्यों नाश्ता तकलीफ है। हम लोग इंसान हैं, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम ओथ इज गोथ गीत और गजल, और उसके बाद 9 से तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्म्स में द ग्रेट अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए है। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना। रवि साहब जी

सज्जालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो साथियों, आज का इस हसीन रात्रि का शुरुआत मैं करने वाला हूं। और देखा जाए, जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो आज का तापमान रात्रि का तकरीबन 17 और 18 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था। और 10 मिनट बीत गया है 8 बजकर। कुछ पुराने पुराने नगमे सेलेक्ट किया हूँ, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना। अगर खास करके अगर आप पुराने गाने को पसंद करते। और आज का तारीख देखा जाए तो 16 सितंबर 2020 हो गया है। और इस हसीन रात्रि को मैं और ताजे करने वाला हूँ एक जबरदस्त सॉन्ग से। पुराना नगमा है और फिल्म सुवर्णा सुंदरी 1957 में से निकाला हूँ। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, महान गाने वाले हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का दो खंबे पिलार सभी से हैं, द क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी और द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज़ों में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए, जो लिखा है महान लेखक भरत व्यास जी के जरिए। और एक जबरदस्त क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने का, मैथन मुइल का नाम पेनो पात्रोनी अद नारायणा राव जी का बनाया हुआ ये जबरदस्त धुन आप सुनिए कि कुहू कुहू बोले कोयलिया। एक बहुत ही जबरदस्त क्लासिकल सॉन्ग है और ये गाना से आप सभी को महसूस और फील हो जाएगा कि लता जी और रफी साहब जी कितने ट्रेन किए हुए हमारे शास्त्रीय संगीत का ये दोनों माहिर थे। तो मिल के सुनते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग।

Closing by the great music director met een oh zo moeilijke naam, maar groot hoor. Dit werk wat hij gecomponeerd heeft is Bouti Jabberjust. Penu Patruni, Adhina Rayana Rauka Banawaye, Adi Sunder Dunapur Sunder He, The Eidufilam. Suwarna Sundari uit 1957. Program kwake badhate ek aur jab just ghazal jun ke rakh chuka hu prayer mein aap sabhi ko sunane ke liye aur late hai mahan gayak uit de jaren 80 90 2000 abhi tak gata hai ye mahan fankar hamare bharat desh ka जबरदस्त गायक डॉक्टर येसुदास जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान एड फिल्म स्वामी 1977 बासु चटर्जी और म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन जी का ये प्रोड्यूस किया हुआ सुपरहिट सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

Onder Bayan uit de film Swami 1977, a masterpiece of composing by maestro Rajesh Roshan. Aur kya awaaz hai ye mahaan gayak ka, Dr. Yesudas ji ka. 6 minute reh gaya hai 8:30 bajkar budhwar ka raatri ka program. आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम खलिंग्त में संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम. जरा दिल को थाम लीजिए, एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनने वाले हैं और लाते हैं एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये सुपरहिट सॉन्ग एवर ग्रीन सॉन्ग. और देखा जाए ये पुराने गाने तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा व्यू मिल चुका है ये जबरदस्त सॉन्ग के लिए. एक जबरदस्त मूवी आउट 1964 वो कौन थी. म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन का बनाया हुआ ये एवरग्रीन धुन खसखरीफ दौर राजा मेहदी अली खान जी. लग जा गले फिर ये हसी रात हो ना हो. One of my favorite songs, Lata Ji ka. Milke sunte hai aur dil ko zarur tham lijiyega. Lata Ji option best. Ja.

ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बेदर्द जमाना, क्या जाने कल्याण जी आनंद जी के साथ पर आप सुन रहे थे दो जबरदस्त गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का रफी साहब और लता जी। 15 मिनट रह गया है 9 बजने में साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंत मेथ संगीतकार का दास्ता नाम कार्यक्रम। एक जबरदस्त सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी खोज 1971, और एक बार फिर लाते हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी, और वो सुनाते हैं आप सभी को मैंने तुझसे किया है प्यार। ग्रेट सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज्ड बाय फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट उषा खन्ना जी, और अल्फाज है आजाद भोपाली जी का।

0: Beautiful song ay dilruba. Lako karo kadil chu rane wala the heart of millions the mighty monkeys jike beautiful awaz me. It is under bayana a person rehet he aur unka saath de raha tha the great Kishore nahi Suman Kalyanpur ji महान संगीतकार ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर गणेश जी का बनाया हुआ है ब्यूटीफुल धुन खुशरीफ डोर अख्तार रोमानी। तो साथियों यहीं तक था आज का पहला अध्याय गीत और गजल ओथ इज गोल्ड नगमे जो आप सुन रहे थे। मैं रिसर्च कर रहे थे कुछ गाने के तो कुछ और खोजता था और मिल गया कुछ और दिस एपिक हेयरफेयर फन सेलेक्टेड टू बी आर फीचर्स फॉल। दिस द कमेंट वुंसडाग ga ik dat proberen voor jullie af te draaien, want het zijn hele mooie leuke nummers. Een paar zijn ook nooit in de films voorgekomen, non-films songs. और उस जमाने में होता था गाना बन जाता था लेकिन फिल्म नहीं निकलते थे, ये सब होता था ना। तो अब आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों तो 2 मिनट गुजर चुका है 9:00 और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रेस लवी लवी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें जरूरी खबरें इश्तिहारे डैंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप कहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल फन मांडा टॉट फ्रेडा तेडेंस कंटोर उर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-362-2047 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम। और इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में ढंढोड़ा भी पीट देना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। एंड वी हैव ऑन्स कराओके टीम वार हेयर फेल ओमरूपर्स फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लाइव कराओके सिंग इलेवन मिस्किन अलखोर्ट van afgelopen donderdag. We hebben besloten om elke laatste donderdag van de maand vanaf 6:00 s'avonds live karaoke voor jullie te komen zingen. Hè? Dus blijf luisteren en volg onze social media van Vahon en ook van de omroepers. Dat gaat u zeer zeker zien waar wij binnenkort gaan optreden. En trouwens aanstaande vrijdag bij FC Wanica organiseert onze Anil Bhai een karaoke contest vanaf 6:30. Bent u ook van harte welkom daar. Wij gaan er ook zijn. Ik, waarbij ik hoor dat Bhai Ganga ook gaat zijn en ook nog een paar omroepers. U bent van harte welkom bij FC Wanica vanaf 6:30 kunt u zich daar aanmelden. De mijn flyers door zijn social media bij al rahe. Bekijk het en maak contact met Anil Bhai. Dan komt hij ook lekker genieten met ons. Toen aan bij hem loka member bane, ook bhi banaye.

वादा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं हमारे दूसरा अध्याय गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड का। और देखा जाए तो बीते हुए हफ्ता हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म एक महल हो सपनों का तक, जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन नेकडिंग फेवन सीवन तक में। और एक आखिरी गाना रह गया था सुनाने को उस फिल्म से, तो वो मैं लगा चुका हूँ प्लेयर में। एक बार फिर लाते हैं वही महान दो गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, द किंग एंड द क्वीन, लता जी और रफी साहब जी की आवाज़ में। आप सुनिए हमसे पूछो कि हकीकत क्या है यारो, साहिर लुधियानवी जी के अल्फाजे और महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट रवि शर्मा, जिसे हम लोग रवि के नाम से जानते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ ये जबरदस्त धुन।

0: जो न मचले वो तबीयत क्या।
1: तबीयत वबीयत सब रखी रह जाती है जब पैसा नहीं होता।
2: पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा।

Whiskey!

0: से विनती है कि कौम के लिए चंदा दीजिए, जेबे झाड़ कर छप्पर फाड़ कर, कहीं गड़ा हो तो उसे उखाड़ कर, अब मैं तो थक गया गला फाड़ कर। तो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी का असली हीरों का हार अर्पण करता हूँ।
1: असली नहीं है,
0: पता है नकली है। फर्ज

0: नाना
1: नाना
0: रोज नई हिरविन से लिपटू प्यार के गाने गाऊं, तू जल भुनकर माथा पीटे और मैं नोट दिखाऊं, और मैं नोट दिखाऊं। इसीलिए तो कहता हूं कि पैसा

मजेदार और सत्यवतन वचन सॉन्ग एड फिल्म एक महल हो सपनों का नीति फैंसी तक किशोर दा और लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप सुन रहे थे कॉम्पोनियर डॉ रवि। मिनट गुजर चुका है 9:00 साथियों, अगला बयान अब एक दूसर फिल्म का होगा क्योंकि सभी नगमे फिल्म एक महल हो सपनों का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को साथियों एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था तक में फिल्म धोती लोटा और चौपाटी, और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है द ग्रेट एक्टर कॉमेडियन श्री जगदीप जी के साथ, ब्यूटी क्वीन फरीदा जलाओ और द ग्रेट कैबरे डांसर हेलन जी भी इस फिल्म में काम किया है, साथ ही साथ मोहन छोटी जी के साथ महान संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी के साथ है, और लायरिक्स है कसरल राय के। तो उन्हीं फिल्म से आप गाना आप सुनेंगे, फिल्म बहुत ही कम गाने हैं, 4 गाने इस फिल्म में से मैं निकाला हूं और खोजा तो नहीं मिला। तो फिल्म या धोती लोटा और चौपाटी से आप गाने सुनिए। अगला बयान सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब, नितिन मुकेश और कुछ अल्फाजे एक्टर मोहन छोटी कोरस के साथ भी आप सुनेंगे। तो मिल के सुनते हैं जगत में राम।

0: जी हुजूरी और खुशामद की दुनिया में भक्त जनों,
1: जी हुजूरी और खुशामद की दुनिया में भक्त जनों, छोड़ के हर भगवान।

0: है थानेदार का चमचा, बनिया शाहूकार का चमचा, आशिक है दिलदार का चमचा, चमचा चमचेदार का चमचा, चमचा गिरी चमचा गिरी चमचा गिरी, बोल महाचमचों की
1: मजेदार सॉन्ग ऐड फिल्म धोती लोटा और चौपाटी 1975। जबरदस्त गाने वाले रफी साहब, नितिन मुकेश और कोरस मोहन छोटी के साथ मिलकर यति सुंदर बयान को सुना रहे थे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 8 मिनट बाकी है 9:30 बजने में और कार्यक्रम चल रहा है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड, संगीतकार का दास्ता नाम कार्यक्रम। और नगमे जो आप सुन रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है और हम पहुंच चुके हैं फिल्म धोती लोटा और चौपाटी तक जो रिलीज किया गया था नेगेटिव फैंसी तक। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी ठुमक ठुमक चले, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर रफी साहब और उषा मंगेशकर जी।

0: वाह वाह वाह मुन्ना मुन्नी, भाई गॉड तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया।
1: सच कमाल कर दिया। एड फिल्म धोती लोटा और चौपाटी 1975 से आप ये चीजों दरमियान सुन रहे थे रवि साहब और उषा मंगेशकर जी की आवाज में। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो है साथियों, 2 मिनट बाकी है 9:30 बजने में। अगला बयान एड फिल्म धोती लोटा और चौपाटी 1975 से, और इस बार आप सुनिए एक कैबरी सॉन्ग संग दौर उषा मंगेशकर जी, 100 बार की तौबा।

Song, great song from the movie Dhoti Lota aur Chau Party, Saubhar Kya Tauba aur Saubhar Kar Liya Fir Pyar Hi Pyar. Mashhoor gaane wali Shishi van Lata ji, Usha Mangeshkar ji ka ye super hit song, gecomponeerd door Shyamji Ghanshyamji. मिनट गुजरने वाला है और 9:30 बजकर तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए. कुछ दो लाइन शेर शायरी है साथियों, यही तो खूबी है ना दो लाइन शेर शायरी का कि इतने कम लफ्जों में पूरी कहानियां लोग सुना देते हैं. जो किनोर क्या है यार कि ना जाने कैसा जादू है तुम्हारी हंसी में, ना जाने कैसा जादू है तुम्हारी हंसी में, एक पल में उदास चेहरा खिल जाता है. ये भी होता है यार.

गिला एक दफा किया जाता है, गिला तो एक दफा किया जाता है, फिर अपनी बात की अहमियत देखी जाती है।

0: लोग नई साल में नई ख्वाहिशों मांगेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा वो पुराने वाला साथ ही चाहिए। ये था कुछ दो लाइन शेर शायरी। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और साथ ही साथ आखिरी बयान फिल्म धोती लोटा और चौपाटी तक गाने वाले हैं। एक बार फिर जबरदस्त गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का उस जमाने के मशहूर गाने वाली प्रीति सागर, और साथ दे रहा है प्रीति जी का सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी, श्याम जी घनश्याम जी के सांच पर।
1: अरे आईना भी तेरा उन पे

अच्छा, हाय हाय।

क्या बात है, मजेदार सॉन्ग एक फिल्म दिखाए जाए धोती लोटा और चौपाटी 1975 आखिरी बयान सुना रहे थे आप सभी को सुरकबाचा द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी उनकी साथ उनका साथ दे रही थी मशहूर गाने वाले उस जमाने के प्रीति सागर कोरस के साथ। 15 मिनट रह गया है साथियों 10 बजने में, तो सभी नगमे फिल्म धोती लोटा और चौपाटी का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं एक और जबरदस्त मूवी जो रिलीज किया गया था 1975 में, और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न ब्यूटी क्वीन सेक्स बॉम्ब उस जमाने का डिग्रे शर्मिला टैगोर जी के साथ और अमिताभ बच्चन जी कुछ रोल्स अदा किया है जया बहादुरी जी के साथ मिलकर। महान संगीतकार सचिन देव बर्मन जी के साथ है एस डी बर्मन जी का और सभी गाने लिखे है उस जमाने के महान लेखक डिग्रे आनंद बख्शी जी ने। तो फिल्म चुपके चुपके से आप नगमे सुनिए, एक जबरदस्त सॉन्ग मैं रख चुका हूं प्लेयर में और लाते हैं एक बार फिर प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में एस डी बर्मन के सांच पर आनंद बख्शी के अल्फाजे अब के साजन सावन में जबरदस्त सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

क्या बात है, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान, क्या सुर में गा रही थी, क्या बात है। अभी तक लोगों का कहना है कि लता जी के जितने गाने हैं सभी पक्का सुर में है तो इसीलिए तो उसे द क्वीन ऑफ मेलोडी हम लोग कहते हैं ना। तो इतना अच्छा नगमा एड फिल्म चुपके चुपके, और क्या कंपोजिंग है महान म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन जी का, अल्फाजे तो क्या बात है यारो। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है, और इस बार लता जी के साथ दे रहा है लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी, स्पेशल फॉर द मुका फैंस। ये ब्यूटीफुल डुएट आप सुनिए बागों में कैसे ये फूल के बोल, क्या बात है। दो जबरदस्त महान एवरग्रीन आवाजें ये तीज सुंदर बयान आप सुनिए और एंजॉय कीजिए।

तमाम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स ससलो बिलो बी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंत फॉर एट लेजरन। 3 मिनट वे की तो हो चुका है 10:16। 16 सितंबर 2026 वुंसडागावंड का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग डेन हाग शहर से। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे डेन कन्फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से डाउन सर्विस गारंटी क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो उपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी बेलो अपने 07-365-2247 कंतोर और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिकलाम बनाते रहना यार चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना हम लोगों के बारे में क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड सो ऑल अलमाल वेट है वह है ऑन से एक करा ओक टीम दी landelijk links en rechts ook op gezellige bijeenkomsten contesten zijn. Er ook waar we ook lekker aan het optreden zijn, waar heel veel omroepers en omroepsters live aan het zingen zijn. Karaoke, live muziek, also bij Faun Hindustani Radio elke donderdag, laatste donderdag van de maand, vanaf 6:00 s'avonds live karaoke op Faun Hindustani Radio. En jullie eigen omroepers, hè? Die gaan ook live voor jullie zingen. Dus blijf luisteren. Barake Mutabik. Kutsch Nagmin Regia. Hey, Sunaniko Ab. Sebiko uit de film Chupke. Chupke. Released in 1975. Sharmila Tagore. Aur Amita Bachchan. Samen met Jaya Badru. Badhuri. Aur Bachchan Baad mein. En natuurlijk met Harmendra Ji, een prachtige mooie film met Om Prakash Asrani ook erbij. Milket Sunte, Jabardast Song, Queen of Melody, Lata Mangeshkar Ji ke Beautiful Awaaz me. Title song from the movie Chupke Chupke Chal Re Pur Vaiya.

0: अति सुंदर बयान श्रोताओं के समय में पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से एक फिल्म चुपके चुपके लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज अरेंज बाय एस डी बर्मन जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुने 12 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर। अगला बयान जरा गौर से ये नगमा को जरूर सुनिए क्योंकि ये दो महान गाने वाले हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, द किंग ऑफ मेलोडी और संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह द ग्रेट किशोर दा, एक जुगलबंदी दोनों में सरगम के रूप में आप सुनिए कि सारे गामा में कितना जादू है और कितना ताकत है। यही तो है साथ सुरो जिससे सभी म्यूजिक संगीत गाने सभी बनते हैं यारो, यही साथ सुरो में। तो मिल के सुनते हैं ये दो जबरदस्त कलाकारों का मिलन हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, जिसपे मैं नाम से गर्व है और होना भी चाहिए। हसीनों का पुजारी किशोर दा और द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी, ऑप्शन बेस्ट।
1: चल शुरू हो जा।

0: सापे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

मुस्कुराहट का असर कुछ ऐसा है, तेरी मुस्कुराहट का असर कुछ ऐसा है, दिल संभालता हूँ फिर भी तेरा ख्याल आ जाता है। तेरी बातों में वो मिठास है जो बिना चीनी के दिल को मीठा कर देती है। क्या बात है, ये भी होता है, आंखों से जो तुमने इशारा कर दिया, आंखों से जो तुमने इशारा कर दिया, हमने समझा दिल ने फैसला कर लिया। तेरा अंदाज भी कमाल का है, तेरा अंदाज भी कमाल का है, बिना कोशिश के भी दिल बेहाल कर जाता है। तुम्हारी एक छोटी सी तारीफ पर ये दिल खुशी से कई कहानियां बना लेता है, ये भी होता है।

आखिरी आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, तू निभा तो सही तेरी खातिर, तू निभा तो सही तेरी खातिर, जमाना ठुकरा दिया तो कहना। तो ये था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आखिरी बयान आप लोग सुनेंगे, सुनाने को जा रहे हैं एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। और दामस हेर हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का एक बड़का भैया कुलीखा फन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो, द वन एंड ओनली फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट मैस्त्रो रोमियो होस्ट जी का आज जन्मदिन है। इस मित गॉड्स विल इन हेले गुडे गेसोंडहेड वंदाग 80 जार गवर्डे तो हमारे डायरेक्टरलेडे टीमलेडे और सभी ओमरूपर्स के तरफ से भाई रोमियो होस्ट जी को तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां पेश है। वक्त के दबाव है और काम ज्यादा है ना, तो मेरे ख्याल से कल और रविवार को मैं ज़रूर कुछ ना कुछ चलाऊंगा अपने बड़का भैया के याद में। खैपत बरिख्त है लात क्रेख है लास प्रोग्राम है साल गमाकत एने दिट इस ओक मलास्त नुमर फोर फनाफन साथियो लता जी के आवाज में एट द नवा मूवी में से ये नगमा है, क्योंकि चुपके चुपके फिल्म में सिर्फ चार गाने थे और वो सभी मैं आप सभी को सुना चुका हूँ, आखिरी शेर्स भी सुना चुका हूँ। तो एक फिल्म जो रिलीज किया गया था इन 1975 में, फिल्म चैताली में से आप एक गाना सुनिए कि धरती अंबर नींद से जागे। जबरदस्त डुएट है लता जी और मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में, आप सुनिए आनंद बख्शी जी के अल्फाजे है और महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज। लता जी सुनाती है धरती अंबर नींद से जागे, देखो अपने आंगन मन्नारी जी के साथ।

Beautiful song dharti ambar neen si jage to sathiyo ati sundar bayan hai the film chaitali lata ji aur manna de ji ki awaaz mein ye aap sun rahe the gecomponeerd door lakshmikant pyare lal to jate dante sathiyo jaise main aap sabhi ko abhi kaha कि हम लोगों का महान अनाउंसर साथी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कॉरेस्पोंडेंट एंड जर्नलिस्ट रोमियो होस्ट जी का आज जन्मदिन है. इस 80 यार फंदा गवर्दे तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्ट लीडर उमरूपर्स मीडवर्कर्स के तरफ से भैया रोमियो होस्ट जी को तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है. इट इज अ बिट लेट मा मे दिस प्रachtig नंबर आ दी मेरे यू फरियारी ब्रो दान वी कॉन्फिस्टेर यू मेट्स ऑल एंड ऑफ नाउ द 100

En lang zal hij leven natuurlijk in de gloria, met de goede gezondheid, heel veel geluk natuurlijk, voor onze Biggie Brada, correspondent en journalist van Fahon Hindustani Radio, maestro Romeo Hoos, vandaag 80 jaar geworden. Felicitaties namen alle directieleden, omroepers, medewerkers van Fahon Hindustani Radio KTRFC, Bhai Romeo Hoos ji ko teh dil se badhaiyan hi badhaiyan, khushiyan hi khushiyan, pyar mohabbat ke saath pesh kar rahe the. To saathiyon, yahi tak tha aaj ka mere hisse ka karyakram jo samapt hone ko aaya. Ye aash umeed lekar ghar ko ja raha hu ki is taur tareeke se main कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में. ये यश उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा. अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए सरनामी संगीत लेकर. पहला और दूसरा अध्याय सरनामी संगीत, बैठक गाना, इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक, और लास्ट अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. तो मुझे आप सभी इजाजत दे. जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सुना देता हूं.

आप ही का हैप्पी स्टेशन फा हो हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दोस्तों ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया जब, तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को। लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा। तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं, दूसर एक्ट्रेस को ले लेना, तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज को नहीं बदलूँगा। तो जाकर रजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और रजेश खन्ना और मुमताज इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया, और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

जीएस खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा का सॉन्ग अभी आपने किशोरदा की आवाज़ में सुना। हर एक काम जो आपके रेडियो को से कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से, नील सीफन तक 3 5 3 2 फिर सीफ पर आपको तार करना है।

लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना फाह हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म जॉनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ। मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मांड फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना। जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में ऐरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवे में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल, स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना, कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं, वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाले बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब भाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फहन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है, ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे। जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों, उबकाई आने लगे। जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है। जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो। जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूता उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आंख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गाय हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पांव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురుమి దేవ సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా హూ అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కి శ్రేష్ఠతా కే హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ आज हम सब फिर उपस्थित हो गए हैं इस समय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश यहाँ से प्रारंभ होने वाले हैं। शांता जी जो इस समय माइक के पीछे बैठ चुके हैं और राजेंद्र जी जो पैनल के पीछे है, तो शांता जी पहले कुछ सुनाइए और राजेंद्र जी उसके बाद में फिर कार्यक्रम को हम सब आगे बढ़ाने वाले हैं।
1: हाँ, सुनने वालों, जिंदगी में कभी कुछ खत्म नहीं होती, जिंदगी में कभी कुछ ख़त्म नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत इंतज़ार में रहती है। इसी वाणी के साथ सुनने वालों, आपको सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। यहाँ से ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में आप सब तक पहुँचे और यहाँ हम आगे बढ़ चलते हैं राजेंद्र जी की ओर।
2: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हमारा जो कार्यक्रम है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ ना कुछ नया खोज के लाते हैं। इस बार जो नया है वो हरि प्रबोधिनी एकादशी का निर्णय है और उसका कार्यक्रम करेंगे। तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं जो सुनते हैं इतने प्रेम से इस गीत कार्यक्रम को और गीतों को, मुझे लगता है उनको बड़ा पसंद आएगा और उनके सब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सदैव काम आती रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्यों ना एक सुंदर सा जो लोग उदासी हैं उनके लिए लगाया जाए, उदासी मन काहे को भरे।

0: करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों, यहाँ जो हम सब आज उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में, तो जैसे आपने सुने हैं कि राजेंद्र जी ने हम सबको और ये संदेश दे ही दिया है कि विषय क्या है आज का, और विषय के बारे में अभी बातचीत जरूर होने वाले है, पर अभी तो कुछ तैयारी हो रहा था जल्दी जल्दी से। और यहाँ भी मैसेज इंडिया से भाई राजीव शर्मा जी के भी आए हैं कि मैसेज में ये है, शांता जी मैसेज तो बड़ा सुंदर मैसेज है, क्या मैं इसे सुना सकता हूँ या अभी नहीं?
1: जरूर से सुना देना,
2: अगर मैसेज आया तो सुनाने में कुछ हर्जा नहीं होना चाहिए,
0: हर्जा होना नहीं चाहिए,
2: तो चाहे सुनाना।
0: तो ये मैसेज है कि कलम के अंतर्गत ना, कलम तभी साफ और अच्छे लिख पाते हैं जब वो थोड़ा से झुक करके चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। और इसी तरह से ऐसा सुंदर संदेश जो भाई राजीव जी ने भारत देश से हम सब के लिए व्हाट्सएप द्वारा भेजे, तो हम उन्हें जरूर आपके लिए सुनाते रहेंगे। और आज का विषय के अंतर्गत जो हम सब ये सुंदर विषय है राजेंद्र जी, उसके बारे में आप क्या सुनाने वाले हैं और इसे हम क्या समझ सकते हैं? इस
2: आज का जो विषय है वो हरि प्रबोधिनी एकादशी का विषय है। जैसे कि हम बता ही चुके पहले कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के विषय के बारे में बात करेंगे, और वो विषय इस प्रकार से कि इस वर्ष कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी अर्थात देवोत्थानी एकादशी पर्व को लेकर विविध पंचांग कैलेंडर व सोशल मीडिया में, जैसा कि वाराणसी के ज़्यादातर पंचांगों में होगा, जैसा कि विदित हो कि सूर्योदय 6:36 पर यानी उदय तिथि कालीन एकादशी जो कि पूरे दिन प्रशस्त रहेगी, इसी दिन स्मार्त व वैष्णव जन सभी को एकादशी का व्रत रखना होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। क्योंकि निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार दशमी युक्त एकादशी को व्रत के लिए निषिद्ध माना गया है। इसका विस्तृत विवेचन पृष्ठ संख्या जो इसमें वृतांत है उसमें दिया जाता है, जिसका वर्णन असंभव है करना, इसलिए थोड़ा सा संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। काला काष्ठादिगत्ति वै दृश्यति दशमी विभो एकादश्याम न कर्तव्यम व्रतम राजन कदाचित। निर्णय सिंधु प्रथम प्रेक्ष पृष्ठ में लिखा है कि ध्यान दें कि इस वर्ष रात्रि मृत्युलोक की भद्रा रहेगी, अतः इस अवधि में देव प्रबोधिनी व तुलसी विवाह बिल्कुल न करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो मदरत्न में 12 पुराण का मत है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सोमवार के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से युक्त हो, तो अन्यथा कही गई है। एकादशी सोमायुक्त कार्तिकेय मासी भामिनी अर्थात इस दिन किया गया व्रत गंगा स्नान दान पूजन तथा श्रवण आदि का अत्यंत फल प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन यथासंभव दान पुण्य आदि शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए।
0: राजेंद्र जी, अगर हम इतना जल्दी जल्दी से ये संदेश अपने सुनने वालों को और जरूर पहुंचाएंगे, तो इसमें थोड़ा से हम सबको और इसे निचोड़ना है। और ये हरि प्रमोदिक एकादशी, ये एकादशी के अंतर्गत में अभी तो आगे में काफ़ी, पर इसी में थोड़ा से हम सब और भी संदेश रखते हैं, क्योंकि अभी तो हम अभी समझा नहीं इसमें, तो पहले क्यों ना एक गीत के ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद में हम सब इसे खूब अच्छी तरह से निचोड़ते हैं कि संदेश जो एकादशी का है आज का और हमें कैसे क्यों और कब करना है, उस अंतर्गत में हम सब अभी और जानकारी पाने वाले हैं। सुनने वालों आप ध्यान देना। राजेंद्र जी, पहले क्यों ना एक सुंदर सा और शांता जी का पिटारा सा निकाला हुआ,
2: शांता जी के पिटारा से यही निकाला है कि यदि नाथ का नाम दया निधि है,
0: हाँ,
2: विष्णु भगवान प्रिया श्री देवराज जी ने गाया है और बहुत ही सुंदर भजन है, उसको सुनते हैं, चलते हैं भजन की तरफ।

0: राजेंद्र जी, आपने तो हम सबको ये एकादशी का और कब समय, कब तिथि है, कब क्या है, पर इसमें थोड़ा से और ये, क्योंकि ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन का ज्योति जो जल रहा है इस समय, उसमें थोड़ा और प्रकाश होना चाहिए। तो राजेंद्र जी, इसमें अब ये बात हो जाता कि आप इसमें कुछ और प्रकाश डालिए।
1: चांद भी क्या खूब है।
0: वाह राजेंद्र जी, इस बात तो सही है, चांद तो क्या खूब है।
1: चांद भी क्या खूब है, न सर पे घूंघट है, न चेहरे पे बुरका।
0: लो,
1: कभी करवा चौथ का हो गया तो कभी ईद का, तो कभी ग्रहण का। अगर जमीन पर होता तो टूटकर विवादों में होता, अदालत की सुनवाई में होता, अखबार की सुर्खियों में होता, लेकिन शुक्र है आसमान में बादलों की गोद में है, इसलिए जमीन में कविताओं और गजलों में महफूज है। पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं लोगों को कि चांद के बारे में कभी कुछ इस प्रकार से चांद का कार्यक्रम रहा। अब संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
0: कहने के तो बहुत है, पर कहना ये है कि अभी तो हमें ये एकादशी व्रत, इसके बारे में जानकारी कम है, तो ज़रा हम सबको इसमें थोड़ा और जानकारी दीजिए ताकि हम सब इसे बढ़िया से समझ पाए। ये तो हम जान गए कि किस दिन है और कब क्या करना, पर
2: नहीं अभी तो हमें यहाँ तलक
0: हम सबको आप कुछ सुनाई नहीं, तो हमें इसका जानकारी दीजिए हो सके तो राजेंद्र जी।
1: हाँ, एकादशी के बारे में जो आप लोग जानकारी चाहते हैं उसके अनुसार मदरत्न में 12 पुराण का मत है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। हर महीने एकादशी आती है, लेकिन जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका वृतांत कुछ और ही ज़्यादा रहता है। तो एकादशी सोमायुक्त कार्तिक के मास में भामिनी, अर्थात जो अगर सोमवार को एकादशी हो गई कार्तिक मास में तो उसका ज़्यादा विधान रहता है। तो एकादशी में, एकादशी के बहुत सारे श्लोक हैं। उद्दिष्ठान ओ गोविंदम त्यजिंद्रो जगवंतति त्वद्दी सुप्ति जगन्नाथ जगत सुप्तम निभिभेदा उत्थष्टो बारह दृष्टम दृत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राण घाती ना लोके मंगलम कुरु। तो एकादशी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे आएगी। अब आप आगे की बात करते हैं कि देवोत्थान एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा का विधान है। कई जगहों पर इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराने की परंपरा भी रही है। ये तिथि देवों के जागने की होती है, जिसको इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए व्रत की विधि और नियम क्या है। आप सब लोगों ने तुलसी विवाह की देवोत्थानी एकादशी पर्व का देखा होगा। देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु समेत सभी देवता अपनी योग निंद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है। देवोत्थानी एकादशी, इस दिन निर्जल या केवल जलीय पदार्थ का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है।
0: तो राजेंद्र जी, निर्जल,
1: निर्जल मतलब बगैर पानी पिए जी,
0: और सुबह से रात तक,
1: सुबह से रात तक।
0: और दूसरा क्या था, निर्जल और
1: जलीय, यानी कि कुछ लोग बगैर पानी के रह सकते तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बगैर जल के, कुछ लोग जल पी के एकादशी कर सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना, कुछ नहीं, केवल पानी पीना, या बगैर पानी के रह सकते तो वो भी अच्छा।
0: तो ऐसा भी होता है, और ये इसका मेरा अंदर से ये निकल रहा है कि इसमें जरूर कुछ लाभ होगा, तब हाँ। तो ना ये किया जाता है, पर अभी तो मैं आशा रखता हूँ कि अभी आप हम सबको जरूर सुनाने।
1: हाँ, इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार यानी कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
0: तामसिक माने तो?
1: तामसिक मतलब तीन गुण होते हैं, सत, तम, रज, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। तो तामसिक भोजन का मतलब है कि जैसे आपने लहसुन प्याज ले लिया, ज़्यादा मसाले, मांस, मदिरा,
0: वो बिल्कुल ना,
1: हाँ वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो सब तामसी भोजन के अंतर्गत आता है। तो इस दिन कम
0: ऐसा
1: कम
0: नहीं चाहिए, बिल्कुल ना
1: ऐसा ना चाहे खाना।
0: पर तामसी में नमक आता भी
1: नहीं? नमक नहीं आता, नमक तामसिक में नहीं आता है।
0: नमक तामसी में नहीं आता?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो
1: तामसिक का मतलब होता है कि जिस भोजन को करने से हमारे अंदर तमोगुण जागता है वो तामसिक भोजन है।
0: ऐसा,
1: तो सात्विक तामसिक राजसिक तीन प्रकार के गुण हैं और भोजन के अनुसार उनका होता है, उसका जो जैसे भोजन करते हैं वैसे गुण प्रबुद्ध होते हैं।
0: राजेंद्र जी, इसमें जब मैं ज़्यादा ना पूछ लूँ तो ये व्रत सूर्य उदय से पहले होता है स्टार्ट?
1: व्रत तो जब आप उठे तो उस समय कुछ नहीं, यानी कि सूर्य उदय के पहले कुछ खा लिया और फिर जब उदय हो गया तब नहीं। व्रत तो जब आपने रात्रि का भोजन किया तो फिर इसके बाद जो निर्जला व्रत है वो उसके बाद जल भी नहीं लेना चाहिए, और जल लेते हैं तो पानी पी सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहती है या दवाई खाना होता है तो उन लोगों
0: तो
1: को
0: बेहतर ना करें,
1: तो बेहतर है कि वो लोग ना करें जो बीमार हैं लोग, तो वो नहीं करना चाहिए। जो सुखी है एकदम ठीक है कर सकते हैं उन लोगों को करना चाहिए, कुछ लोग अगर नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए।
0: तो शांता जी, आप क्या करते हो एकादशी व्रत?
2: नहीं
0: करते हैं,
1: तो इस बार करने का प्रयास करना।
0: तो इस बार हम लोगों ने रेडियो से ये कार्यक्रम को ऐसे तैयार कर रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत के अंतर्गत में अभी और भी ढेर सारे जानकारी है, पर राजेंद्र जी क्यों ना हम सब शांता के पिटाड़ा के और पहले देखते हैं और
1: हाँ,
0: देखते हैं कि क्या और लेकर आए हम सब के लिए।
1: जरूर जरूर।

0: हरि ओम, हरि ओम। शिव ही सब है, शिव ही शंकर, शिव ही पूजा, शिव ही। जिस प्रकार अभी शंकर जी का आपने बहुत ही सुंदर भजन सुना, चलते हैं आगे की ओर।
1: सरा से मुझे तो उस मौका दे दो कुछ कहने को।
0: जी बताइए, जरूर
1: थोड़ा से मौका मिल जाए, क्योंकि काफी लोग हम लोग का इस समय जुड़े हुए हैं इंग्लैंड से। जैसिका जी जो इस समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, गीता नेगी जी जो भारत दिल्ली से और ये और कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और
0: दिल्ली से नहीं, गीता नेगी देहरादून से।
1: मंजू जी भी इस समय भारत से ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और भी अन्य देशों से ये कार्यक्रम को सुना जा रहा है। पर राजेंद्र जी, पता है यहाँ एक संदेश आया है, और वो तो मैं सुनाना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: सुनाने का ये है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है ना
0: जी,
1: जब तक तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है,
0: कैसा है।
1: तो आज का कार्यक्रम दोस्तों जो एकादशी, एकादशी के अंतर्गत में अभी तो हम सब उस ओर धीरे धीरे छलांग लगा रहे हैं, और जानकारी हम सबको मिलने वाले हैं। राजेंद्र जी, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बताइए कि एकादशी व्रत के अंतर्गत में हम कैसे और कहां और कब और क्या क्या संदेश है इसमें।
0: देखिए, जो एकादशी में देव उठनी एकादशी है, वो उसका विधान ज्यादा है,
1: क्योंकि ये सभी एकादशी में से सबसे मूल्य है।
0: हाँ, सबसे बड़का एकादशी रहे,
1: सबसे बड़का एकादशी। हाँ।
0: तो इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, स्वच्छ एकदम साफ वस्त्र। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। घर की सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बना लें।
1: आकृति माने तो
0: ऐसा,
1: ओह, यानी कि आपने यहाँ ऐसे, हाँ, चित्र
0: आकृति।
1: हाँ, हाँ, हाँ, क्योंकि आप रेडियो से कर देते लो, पर ये सुनने वालों दर्शकों नहीं है।

0: जरूर है, जितना चटनी सरनाम में बनाया जाता था पहले उखली मुसल से पीस पीस कर।
1: नहीं, वो उखली मुसल वो दूसरा चटनी वाला है। हाँ। उखली एक बड़ा रहे जिसमें धार
0: लकड़ी का
1: जाए,
0: लकड़ी का।
1: हाँ, लकड़ी का भी रहे और पत्थर का भी रहे, दोनों चीज का रहे।
0: हाँ।
1: अब उस उखली के पास मिठाई, फल, सिंघाड़ी और ईख यानी गन्ना रख कर उसे डलिया से ढक दे। इस दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए उठाइए, उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास, इस प्रकार से कहना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र है, उत्तिष्ठ गोविंद त्यजे निंद्रा जगत्पत्ते त्वयि सुप्तो जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थित्थे चिष्टते सर्वमुक्तिष्ठो तिष्ठत माधव गता मेधा वित्यचेवा निर्मलम निर्मला दिशा सरदानी पुण्या चा पुष्टानी गृह मम केशवा। इस प्रकार से भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र है, इस प्रकार करना चाहिए।
2: आपने कहा विष्णु भगवान को जगाने के लिए
1: जी,
2: तो विष्णु भगवान सोए थे का?
1: हाँ, 4 महीने भगवान विष्णु शयन कक्ष में चले जाते हैं।
0: शयन
2: पक्ष, 4 महीने
1: कक्ष में
2: सोने के
1: जो
2: लिए।
1: हाँ,
2: चार महीने
1: से जैसे जे अठ असार सावन भादो अश्विन, 4 महीने कार्तिक में उसका देवोत्थान एकादशी होता है, उस समय भगवान जागते हैं।
2: तो जैसा आपने कहा कि 4 महीने शिव भगवान विष्णु सोते हैं, तो
1: शेष नाग की सैया पे सोते शयन में चले जाते हैं।
2: हाँ जी।
1: और इसके बाद इसलिए तो उस समय कोई शादी विवाह इत्यादि शुभ कार्य नहीं होता है। हाँ। जब ही नहीं हो पाता है,
2: वही मैं पूछ,
1: और करना भी नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि हाँ। भगवान उस समय सोए हैं और सोए में जो कार्य हुए वो शुभ नहीं माना जाता है।
0: ऐसा तो इसीलिए राजेंद्र जी भारत में मैरी यानी कि शादी का सीजन होता है।
1: हाँ, भारत में शादी का सीजन इसीलिए होता है। यहाँ पे तो मैंने देखा है कि हर सैटरडे संडे को कभी भी शादी करते हैं, फिर जाके बाद में कहते ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो अपनी सुविधा के अनुसार शादी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो रीति रिवाज के अनुसार और नियम के अनुसार उसके अनुसार शादियां करनी चाहिए।
2: हाँ, अगर ये हम अकाउंट करें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर,
1: नहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ दिन होते हैं, शादियों के दिन होते हैं।
2: अच्छा।
1: जिसमें कर सकते हैं, तो पंडित लोगों के पास सारा इसका लेखा जोखा रहता है, कब कर क्या करना चाहिए,
0: ज्योतिष
1: शास्त्र के अनुसार उनको पूछना चाहिए कि कौन सा दिन शुभ है शादी के लिए, उस समय करना चाहिए।
0: अच्छा, तो ये भी एक बात हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें भी अपना, हम ना सिर्फ अपना कोई शुभ कार्य करें तो बस अपना ही आखंदा ख्याल करें, पर हमें ज्योतिष और विद्या तथा हमारे ज्योतिष के अनुसार भी कुछ ना कुछ और संदेश को निकालना चाहिए और उसके माध्यम से कुछ ना कुछ भी कार्य करें। पर आजकल राजेंद्र ये ऐसा होता है, लोग अपना मनमानी करने लगे हैं, और ये भी है कि कुछ लोग जिसके ज्योतिष का ज्ञान शायद उतना ना हो और दबा देते हैं दृक पंचांग आदि और उसमें से अपना दिन निकाल लेते हैं, पर क्या वो ठीक है या नहीं?
1: नहीं, ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है,
0: उसे बहुत जरूरी है,
1: तभी करना चाहिए। वो ज्ञान हो उसी के अनुसार शादी का दिन निकालना चाहिए।
0: और नहीं, पर ना सिर्फ शादी, सब
1: शुभ मुहूर्त, हर चीज का
0: शुभ मुहूर्त, क्योंकि शुभ कार्य के लिए, जैसे कि
1: शुभ मुहूर्त ना निकालेंगे तो कार्य उल्टा ही होता है।
0: हाँ,
1: हमने भी देखा है।
2: और ये केवल ना शादी के लिए, जैसे गाड़ी खरीदना हो,
0: गाड़ी
2: घर में
0: खरीदना,
2: प्रवेश करना,
0: नया घर लेना हो,
1: गृह प्रवेश हो गया, गाड़ी खरीदना या किसी को अपने साथ लाना या ले जाना कहीं भी, उस अनुसार होना चाहिए। जी, वापिस बढ़ते हुए अब आते हम देवोत्थान एकादशी की कथा पे। तो क्या है एकादशी की कथा? एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्ष से सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया करें,

0: आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम को मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है, तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में और शयन किया करूँगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने, क्योंकि भगवान विष्णु ने साल भर में 4 महीने शयन की बात करी है, क्यों ना हम एक सुंदर से नगमे की ओर बढ़ते हैं और फिर आते हैं वापस।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का और 4 महीना तक और शयन, यानी कि वो भगवान जो अपने शयन पे रहते हैं, तो उसके बाद में और जैसे कि और भी कार्य जरूर अभी हम सब सुनने वाले हैं कि जब भगवान विष्णु शयन पे है तो कैसे और कार्य किया जा सकता है ना
2: जी।
1: तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप गाना भी लगा चुके हैं, तो गाने की ओर बढ़ने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी,
0: जी
1: कि हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। तो दोस्तों, हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद हम सब अभी आपके लिए एकादशी व्रत के अंतर्गत में और भी संदेश लेकर आए हैं, अभी आपके लिए रखा जाएगा
0: जरूर।

0: जय जय जय तुलसी माता। राजेंद्र जी, इतना सुंदर गीत आपने रखे तो सुंदर गीत को सुन करके मेरा दिल में कुछ और इच्छा हो गया, क्योंकि कार्यक्रम जो आज का है विषय एकादशी है और एकादशी के बारे में अभी हम सबके और भी संदेश को प्राप्त होना है। पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि श्रीमती लक्ष्मण जी जो हम सबके ये कार्यक्रम सुनते हैं और हम सबके लिए एक क्रत और जा करके पानी का तैयारी करके व्यवस्था करके और यहाँ स्टूडियो में हम सबके लिए पहुँचा दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहा जाता है दीदी जी से। और हम सब ऐसे हम सबका हौसला भी और बढ़ता है। पर राजेंद्र जी, जय जय जय तुलसी माता, तो सरा से थोड़ा से माँ तुलसी के बारे में हम सबको भी बता दीजिए, यही एकादशी का और कथन के अंतर्गत।
1: जरूर, तुलसी के बारे में बता देते हैं। तुलसी कौन थी?
0: हाँ, यही यही बात, तुलसी माँ कौन थी?
1: तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी, जैसे आजकल सब लोग पौधा पौधा ही समझते हैं, वो पिछले जन्म की बात करते हैं कि तुलसी थी कौन असल में, जितना इसकी पूजा होती है इतना इसका रखलामा हो रहा है, तो हाँ। थी कौन, क्या है? तो पिछले जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम बृंदा था। बृंदा समझी ला?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नाम तो बृंदा, जैसे यहाँ पर हाँ। लड़की का नाम
1: शांता है।
0: हाँ
1: हाँ, वैसे ही राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी, बड़े ही प्रेम से ही भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया।
0: जलंधर उसका पति का नाम?
1: हाँ, जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, वो भी राक्षसी था। बृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानों में युद्ध हुआ, जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो बृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और बृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए, सबने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान कहने लगे कि बृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो है, अगर दूसरा कोई उपाय नहीं है अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और बृंदा के महल में पहुंच गई। जैसे ही बृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छूने लगी। जैसे ही उनका संकल्प टूटा युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर बृंदा के महल में गिरा। जब बृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने इस रूप में आ गई पर वे कुछ न बोल सके। बृंदा सारी बात समझ गई, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब बृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वही सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला, तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसी तुलसी विवाह के रूप मनाया जाता है, जा सकता नहीं, मनाया ही जाता है। तो इस प्रकार से तुलसी का जो वृतांत रहा, इस प्रकार से रहा।
0: अच्छा संदेश जो आपने हम सबको और माँ तुलसी के अंतर्गत भी रख दिए, तो राजेंद्र जी यहाँ एक मैसेज आ गया
1: जी।
0: मैसेज ये है कि इस खोज में मत उलझे कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखे कि हम खुद इंसान है या नहीं। तो थोड़ा कड़क संदेश है, पर इसमें भी बाकी कुछ वजन है। आगे देखते हैं दोस्तों कि शांता जी आपको क्या, आज थोड़ा कम कह रहे हैं शांता जी,
2: आप लोग जोर तोर से बात कर रहे थे इसलिए हम थोड़ा से बैकग्राउंड तो हो गए।
3: हाँ पर तुलसी के बारे में मैं ये कहूँगी कि हर घर आंगन में तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती है वो घर स्वर्ग समान है,
0: वो घर स्वर्ग समान हो जाता है। ये बिल्कुल बात सही है। पर शांता जी ऐसा है, हमें जरूर भटकना नहीं चाहिए अपने और विषय से, पर तुलसी माँ कहीं कहीं होते नहीं है, कोई कोई घर पे नहीं होता है ना,
3: ये तो मुझे पता नहीं।
0: ऐसा कोई कहते कि हमारे घर पे तो नहीं हो रहा है तुलसी,
3: तो कोई कारण होगा।
1: तुलसी एकदम शुद्ध, उनको शुद्ध स्थान पे ही तुलसी होती है, अगर थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हुआ तो वहाँ पे तुलसी
0: तो नहीं,
1: नहीं हो पाती,
0: नहीं हो पाती
1: नहीं।
0: ऐसा होता क्योंकि हमें लोग कितने बार कहीं हम गए तो बोले कि तुलसी हमारे घर पे नहीं होता है ऐसा, तो यानी कि यही बात है ना राजेंद्र जी कि कुछ पवित्रता में कुछ कमताई होता होगा ना।
3: पवित्रता में भी कुछ कमीताई होगा और घर में सभी कोने में सभी जगह पर ये जैसा भी राजेंद्र जी ने कहा ना धारा नहीं जाता,
0: वो भी है, उसमें भी भेद है,
3: उसमें भी एक भेद है
0: ऐसा। तो राजेंद्र जी अभी उसके बारे में हम सब शायद समय मिले क्योंकि एकादशी व्रत, और आपने कहे थे कि भगवान जो चार महीने तक और अपने निद्रा में होते हैं, तो क्या वो वृतांत आप आगे बढ़ाएंगे हो सके या
1: नहीं? वृतांत आगे क्यों जरूर बढ़ेगा
0: क्योंकि ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और हमारा जीवन का ज्योति में थोड़ा और प्रकाश तो आना ही आना है। तो राजेंद्र जी हम सबके और आगे बढ़ रहे हैं जो वृतांत अभी सुना रहे थे।
1: तो एक बार की बात है, एक राजा की कहानी है, बहुत मोई कहानी है, अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
0: मोई कहानी
1: बहुत मोई, अब तो थोड़ा जरा कान खोल के एकदम सड़ाक से इधर उधर ध्यान न रखते चाय न पीते हुए सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे।
3: हाँ।
1: प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था।
3: अच्छा?
1: एकादशी के दिन सब लोगों को अन्न दिया ही नहीं जाता था, तो खाएंगे कहाँ से?
3: वही तो।
1: एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज
3: हाँ?
1: कृपा करके मुझे नौकरी पे रख ले।
3: जी।
1: तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख ली कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज जो तुम्हें खाने का सब कुछ मिलेगा
3: जी।
1: पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा।
3: अच्छा।
1: उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया
3: जी।
1: तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा।
3: अच्छा।
1: महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो।
3: वो खाना से बहुत प्यार करता था।
1: वो खाना से बहुत प्यार करेला। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई।
3: हाँ।
1: पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ।
3: हाँ।
1: तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए, वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा।
3: हाँ।
1: जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण की भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे।
0: पीताम्बर बोले तो
1: पीला वस्त्र।
0: पीला वस्त्र। पीला वस्त्र ऐसा क्यों पहनते राजेंद्र जी?
1: पीताम्बर पहन अलग अलग प्रकार के, कुछ लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जब वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं जब आप तैयारी कर रहे हो सन्यास के लिए, जब आप सन्यासी हो गए तो आप भगवा वस्त्र भी पहनते हैं, कुछ लोग गेरुआ पहनते हैं, कुछ पीताम्बर पहनते हैं।
0: हमारे जैसे सूरीनाम में होते थे ना शांता जी, तो कोई भी जैसे कि जनेऊ संस्कार है और विवाह संस्कार हो गए राजेंद्र जी, तो पहले कातून खरीदते थे, कातून का वस्त्र, तो उन्हें खूब, और एक दिन होता था शादी से मेरे ख्याल से भतवान या तिलक से पहले की पियरी होता था,
3: हरदी में उसके
0: हरदी में उसे डिबोल डिबोल करके और एकदम पीला कर दिया जाता था,
1: वही पीताम्बर हो गया,
0: वही पीताम्बर।
1: हाँ।
0: तो यानी कि शुभ कार्यों करने के लिए पीला वस्त्र और पहना जाता कि ना
1: जी,
0: ऐसा
1: ऐसा।
0: तो आगे बढ़िए,
1: 15 दिन बाद अगली एकादशी को, और जब वो भगवान को बुलाने लग गया तो उसने बुलाने पर पीताम्बर धारण किए और चतुर्भुज रूप में पहुंच गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भगवान प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करने पर करके भगवान अंतर ध्यान हो गई तथा वह अपने काम पर चले गया। फिर 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई। एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए, तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वही उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गई। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
0: ऐसा
1: ऐसा,
0: यानी कि पहले अपने आप को शुद्ध करो।
1: हाँ।
0: अपना मन को शुद्ध करो।
1: हाँ।
0: तो फिर उसके बाद में ये जो हमारे एकादशी व्रत, कोई भी व्रत है, व्रत करे।
1: हाँ।
0: बोले जब मन शुद्ध ना है तो कोई फायदा ना,
1: कोई फायदा ना। हाँ।
0: तो शांता जी इसमें आप क्या कहने वाले हैं?
3: हम तो एकदम चकित, एकदम स्थिर हो गए, एकदम चुप हो गए, क्योंकि हम इसमें ध्यान में चले गए कि हम ऐसे तो बहुत करते हैं और कहते भी, हम ये किया, हमने वो किया।
0: हाँ, लोग ऐसा कहते हैं कि हमने ये किया, मैंने वो किया, कुछ
3: जैसे अभी राजेंद्र जी ये कहानी छोटे रूप में, कहानी में इसमें बहुत गहरा संदेश है कि करे के और दिखावे में दो फर्क होता है।
0: सही बात। हाँ। राजेंद्र जी क्यों ना पिटाड़े कर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि शांता जी क्या लेकर आए।
1: हाँ, जरूर
4: सरकार। छूत अछूत का कोई सवाल नहीं, भगवान सब में मौजूद है।

0: जो मिलना है भगवान से,
1: तो मिल पहले इंसान से,
0: तो पहले इंसान से मिल। तो शांता जी बताइए, आपने तो इतना सुना है, सब कुछ देखा है, तो इंसान कितना प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, क्या आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगी?
1: जी, जैसे आपने कहा राजेंद्र जी, तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा हूँ और पढ़ी हूँ और सुनी भी हूँ सत्संग में, तो ऐसे सुनी है कि तीन प्रकार के इंसान होते हैं, कि जो बोलते हैं और नहीं करते, और जो करते हैं वो नहीं बोलते, और एक प्रकार के जो करते भी है और बोलते भी है, ऐसे तीन प्रकार के हैं।
0: तो बहुत बढ़िया आपने जो संदेश दिया है तीन प्रकार के लोगों का। संजय जी, आप इस संदेश के बारे में कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं?
2: नहीं राजेंद्र जी, बढ़ाना नहीं चाहता, पर यहाँ पर मेरे पास आ गया एक व्हाट्सएप ब्रेक।
0: हाँ
2: शांता जी, आप बस यही कह रहे थे और व्हाट्सएप ब्रेक आ गया। आपको पता गिलहरी क्या है?
0: हाँ,
1: गिलहरी
2: हाँ,
1: एक
0: गिलहरी वो होता है ना,
1: जानवर घर
0: नहीं, नहीं जानवर नहीं, वो ऐसे चलती फुदुक फुदुक कर दे,
2: और बड़ी बदमाश होता है।
0: हाँ वही वही वही, जिसके ऊपर का
2: हाँ
0: कलर।
2: मैं एक बार इंडिया में बैठा था पीपल के पेड़ के नीचे, बस वो मेरे ऊपर कूद पड़ा।
0: हाँ वही वही,
2: मैं डर गया, पर गिलहरी
1: उसका लंबा पूंछ होता।
2: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ हाँ।
2: तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी कि यहाँ पर किसी ने एक मैसेज भेज दिया है।
1: अच्छा,
2: दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरी के देन हैं, वे खुराक के लिए बीच जमीन में छुपा देती है और जगह भूल जाती है। इसी तरह से आप भी अच्छे कर्मों करें और भूल जाइए, समय आने पर फल जरूर देंगे। और इसी प्रकार से जैसे कि शांता जी अभी संदेश सुनाए, तो हम अपना कार्य करते चले, अपना अच्छा कर्मों करते चले और फल का इच्छा ना करें ना, क्योंकि समय आने पे जरूर उसका फल को प्राप्ति होता है। तो राजेंद्र जी, आज का संदेश जो हम सब एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत जो ये कार्तिक मास वाला जो एकादशियों में सबसे बड़ा कहलाते हैं, उस अंतर्गत में और क्या संदेश है?
0: हाँ, उसके अंतर्गत में एक राजा की कहानी है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने ही एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस समय इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी भगवान बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूँ? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा।
2: ओ राजेंद्र जी, ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, क्योंकि राज्य का अधिकार पूरा सौंपना होगा।
0: हाँ, शर्त ये,
2: पहले गीत चला देते, एक गीत चला देते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि ये तो बड़ा गंभीर होने वाला है अभी। दोस्तों, हम सब एक सुंदर सा गीत जो शांता जी ने हम सब के लिए खोज खोज करके रखे हुए हैं, पहले गीत की ओर बढ़ेंगे तो फिर आगे ये वृतांत को हम सब सुनने वाले हैं।

0: बकवास।
1: भजले हरी हरी। तो शांता जी, आप कुछ प्रश्न पूछने वाले थे?
2: अभी आपने हम यहाँ पर आपके चर्चा की गिलहरी के बारे में ना, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में एक कथा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश करें तो बहुत अच्छा था।
1: हाँ, गिलहरी जो
2: रामायण के,
1: हाँ रामायण में गिलहरी के बारे में विषय में एक कथा है कि जब समुद्र में पुल बांधा जा रहा था,
2: हाँ,
1: तो उस समय गिलहरी भी सहायता दे रही थी। गिलहरी क्या करती थी?
2: सेतु बंधन
1: में पानी में जाके भीग जाती थी, और फिर रेत में उसके शरीर में थोड़ा सा रेत चिपकता था, फिर वो जाके किसी पत्थर पे झाड़ लेती थी। तो ऐसे वो निरंतर काम कर रही थी। तो भगवान ने देखा कि बताओ एक छोटी सी गिलहरी भी अपना पूरा सहयोग दे रही है, तो भगवान ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया। और जो गिलहरी के कमर में उंगलियों के निशान है, वो भगवान के हाथों के निशान ही हैं। तो इस प्रकार गिलहरी सहायता करने में, लोग कहते हैं कि अरे क्या सहायता करी तूने, पर सहायता दिल से की जाती है, न कि पूर्ण रूप से, जितना जिससे हो सके उतना सहायता कर लेनी चाहिए। तो गिलहरी ने उस प्रकार थोड़ा सा रेत झाड़ी, और उससे क्या होता होगा, लेकिन उसने एक समर्पण का भाव रखा और सहायता करी।
2: कितना अच्छा ना कि छोटी सी गिलहरी, पर वो नहीं सोचा कि, वो ये सोचा कि मैं उतना बड़ी नहीं हूँ,
1: हाँ,
2: कि पत्थर उठा सकूँ, पर थोड़ा से रेत जो मन भाव से वो अपने शरीर से जो लेकर गए, तो भगवान उसको आशीर्वाद दी। बहुत अच्छा।
1: तो आगे की कहानी जो हम बता रहे थे उसके बारे में कि राज्य के अधिकार में सौंपना होगा, आधा राज्य उसके अधिकार में सौंपना होगा, राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा को जब वो सुंदर स्त्री मिली रास्ते में, तो राजा उस पर मोहित हो गए, और राजा ने बोला कि चलो ठीक है, तुम राजमहल में चलो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं चल लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं, तुम मेरी बात मानोगे और आधा राज्य उसको देना होगा, और राज्य का पूर्ण अधिकार भी उसी के पास होगा, और जो खाने में बनाएगी वो उनको खाना होगा।
2: अच्छा।
1: राजा उससे उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी, रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही, तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ, तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा, तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा, राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इस प्रकार का वृतांत बहुत ही सुंदर रहा कि अपनी जो भी व्यक्ति अपने धर्म पे और अपने उस पे पूर्ण रूप से रहता है, उसको भगवान भी दर्शन दे देते हैं। क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ा जाए।
3: राजेंद्र जी, गीत की ओर तो बढ़ सकते हैं, पर हमें तो कुछ अवसर, तो हमें और शांता के कुछ कहना है अभी।
1: जरूर जरूर।
3: तो शांता जी, यहाँ ऐसा सुनाओ। राजेंद्र जी, अच्छे मित्र और अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार, अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है। ऐसा है कि नहीं?
1: ऐसा ही है।
3: तो क्यों ना हम सुंदर से गीत की ओर बढ़ जाते हैं।
1: जरूर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: कहने के तो ये है कि कितने समय से हमें वो सूरीनाम हमारा प्यारा देश उसके ओर भी अभी ध्यान देना कि हो सके तो हमें जरूर जरूर जरूर हमारे सूरीनाम कंडाल के ओर भी ध्यान, और जो इस समय सुन रहे हैं तो एक थोड़ा सा झलक उस ओर भी करने वाले हम सब
1: जरूर।

0: शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। राजेंद्र जी, ऐसा लोग कहते हैं और आज का वृतांत जो एकादशी के हम सब लेकर के यहाँ उपस्थित हुए, तो इसमें मूल ये बात सबसे सरलता से लोग कैसे एकादशी व्रत कर सकते हैं?
1: हाँ, सबसे सरलता की बात तो यही है कि जो लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए, और जो नहीं कर सकते वो कम से कम चावल उस दिन नहीं लेना चाहिए। चावल ना खाए।
0: चावल बोले है भात के ना,
1: भात नहीं खाना चाहिए।
0: हाँ, इस दिन को। और राजेंद्र जी,
1: जी
0: ऐसा भी है कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि सुख, राजेंद्र जी रुक गए,
1: हर कोई अंदर ही है, बाहर नहीं।
0: हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को और ताला किसने लगाया है? तो दोस्तों, ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम इसमें और ला करके अच्छे अच्छे संदेशों रखा जाता है, जिसे हमारे जीवन की ज्योति जो जल रहा है, और ये कार्यक्रम को जो 188 देशों में सुना जा सकता है, लोग इसे सुन करके और कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन का ज्योति में और भी प्रकाश डालते हैं। राजेंद्र जी, गीत की ओर बढ़ेंगे, और गीत का बोल क्या है जरा आप, ओ शांता जी कुछ कहने वाले हैं।
1: जरूर शांता जी, कुछ
2: आपने जो बोल दी तो हम जरूर से कहेंगे। तो आपको जैसे पता है तो ये कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है। हम ये कहेंगे कि खुशी हर रात चांद बनकर आए, कि खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए। कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, कभी दूर ना हो आपको चेहरे से हंसी, ये कार्तिक पूर्णिमा ऐसे सौगात लेकर आए।
0: वाह, अच्छा संदेश। फिर एक बार शांता जी, जो हम सबको सुंदर संदेश रूप से अपना शेर शायरी रूप में और हम सबके लिए रख देते हैं। राजेंद्र जी, क्यों ना हमारे सुरीना

0: नाम हमारा प्यारा देश, तुझ पे मरने से इनकार नहीं। ये गाना सुनते ही हम सीधा सूरीनाम ही पहुंच जाते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, आप कब चल रहे हैं हमारे साथ सूरीनाम?
0: बस मार्च में चलेंगे, फरवरी या मार्च में
1: चल चलेंगे।
0: हाँ,
1: तो हम सूरीनाम जाने वाले हैं। शांता जी, आप भी चलने वाले हैं?
2: हाँ, हम साथ में चलेंगे।
1: और हमारे सभी सुनने वाले जो इस समय ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो वो भी अपना मन ये होता होगा कि चलो हम भी सूरीनाम हमारा प्यारा देश और उस ओर। राजेंद्र जी, हम दूसरा गीत के ओर बढ़ने वाले हैं, और अगले गीत का बोल क्या है ये तो हम अभी बोलेंगे नहीं, पर धीरे धीरे उस ओर हम सबको बढ़ना है, क्योंकि ये संदेश भी आए है कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदरता होता है व्यक्ति के कर्म के, उसके विचार और उसके वाणी के, उसका अव्यवहार और उसके संस्कार के, और उसका चरित्र के। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर वास है। तो ये संदेश जो हमारे लिए भेजे गए भारत देश से, और हम उसे कोशिश करते हैं कोई ना कोई रूप में यहाँ, और लाइव ब्रॉडकास्ट जो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जो न्यूटन स्रात 25 से किया जाता है, आप सभी के लिए और सुनाने को। हमारे अगला गीत के ओर हम बढ़ रहे हैं राजेंद्र जी।
0: गीत के बोल है लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही गीत आता है तो सब लोगों को पता चल ही जाता है कि अब हमारा प्रोग्राम जो है विराम की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, तो क्यों ना इस गीत के बोल जो है सुना दिया जाए सबको,
1: तो फिर आगे देखा जाएगा।
0: आगे फिर देखा जाएगा।

ये खूबसूरत गीत बहुत खूबसूरत है। तो सुनने वालों, जैसे आपको पता है तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम जो है, जैसे राजेंद्र जी ने कहा, विराम को लेने को जा रही है। और जाते जाते मैं ये कहूँगी, मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। इसी वाणी के साथ सुनने वालों, आप सभी को शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम यहाँ से स्वीकार हुए।

तेरी कसम। जैसे ही इस गाने का बोल सोच लिया तेरी कसम आता है, तो हम सोच लेते हैं कि ठीक हमारा समय विराम का होता है। और फौन हिंदुस्तानी की रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि राजेंद्र सिंह का प्रेम भरा हार्दिक नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी बार। तब तक के लिए नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आती है, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। यहाँ तक हमारा कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो यहाँ पर अपना समाप्ति पे आकर के पहुँचे। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके इसमें जरूर लाभदायक मिले होंगे। हमारे सहयोग साथी और शांता खिमाई जी जो हमारा सहयोग थे, और पनेल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ सहयोग दिए। सभी को एक शुभ रात्रि, नमस्कार, और फिर मिलेंगे। Yeah.